आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजु। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 मई महीने का शुक्रवार दिन और तारीख है 29। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है हमारे पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:30 में प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर, इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट।

0: तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। अब आप सुन पाएंगी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से

तो आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत, पेश है भक्ति गीत, जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। सुनिए और खुद को इस खूबसूरत माहौल में खो जाइए।

दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल।

심늘무 사부 멘켄지투 오케 보르다렘 아드도베 모둘라 데소고 도초 카실라 레네두네 니가디심 말렌릴레넘 소르카르 마집 딘치가두나 엠디지투 오케 보르다르 세큐리티 포스 갓뎀 600 헥터스 고 고데 톨렌지남 레가베 웨스트 벵갈 서카름 홈 미니스터 비 코익타투 인디아엘라 차이나에 데스 아니가 도리시코 보르다르 모콤 으카다르 캄 르비시둘라 데스 아니 부파 아야칼르 민실라 산티도 바게름 르밤멘 밤도 엠라 데스 아니 부파 톨르코 톨르칼르 민시게바 엠지닥 베이징 록 워킹 메커니즘 포 컨설테이션 앤 코디네이션 온 인디아 차이나 보르더 에피어스 WMCC 35th meeting kabam duga daglo des anye agom sim tolik kalik bisitu ok agom tau taba min si namam albe rimin men min si toba ok kojallo lega bachin alde kom jabjub min si toba amla ministry of external affairs menken jitu ok delimitation border management mechanism building ok cross border cooperation sok abagat dem kebasogo jab min situ ok trans border river sok lagab expert level mechanism sok kebam ayen badu ga nam lagab india pele lok dinchiba mentoba amla ministry menken jita tu ok diplomatic ok military level lo sakana du kum dubam kambe dobe amla kebasogo des anye tolik bisitu Yajalilo Doni Loni Legabe Arunachal Pradesh Jai Vividhata and MBM Lead Sonam Beej Utsav 2026 Riganam Legabe Minister of Agriculture Gabriel D. Wang Subu Maro Rikok Mengkok Jila Rirab Moka Ok Ngoik States of Nigadde Riknam Abasim Korum Lokka Rila Chenla Pala Rinam Sigi Ijga climate change Ridak Sogochin Majib Agaram Riken Barumo Menmodo Emla Sim Rikok Menkok Daglo Minister Bu Mentu Ok Korumga Riknam Richado Chanam Sim Ngemo Mabe Mochimo Mola Anam Legabe Protection of Plant Varieties and Farmers Right PPV and FR Act Aralo Irugola Anil Alia Selegaba intellectual property right protection sim apply pala sim alro mochi momola anam legaba jiroge hage na nyane minister bu kairu koiktu sok lotu alolo Arunachal agro biodiversity festival and sustainable livelihood exhibition sigim official inauguration rigarla alom lochum gatuku sok exhibition sogo Kepanyer ok luar subun siri lok ni gadde bunuk aliase aci amonam gaddem katom tatom min situ ok sogo Department of Forestry, Animal Husbandry, the Spice Board ok local enterprises pioneering nara abagadde chin relugnyatu. Jiro mokom kago tago nam lagabe Delhi ga National Commission for Women lok High level delegation team emero jiro pulugnyaka. Ok Yesoda AI initiatives ok abam nigadam NCW chairperson Bijaya Rahatkarbu Ingasila district lok anyame ok frontline workers gadam uka darkam rugaka. Ok states ok central government ga naguna scheme rilen mainland ganam gadam regional health ok livelihood department ga alba Rilig ganam gama nam abagadam doluni omenim local namrum tum gadam delegates gad the karik tarik sila tauta ba min sinyatu ok bunuk sakana dinchina ager lagab pulik jinam lagab state government bunam pagla state guest amla menlenjitu daporijo lok subansiri bridge Dolo Mongo Sidu Nam Memero Upper Subansiri Deputy Commissioner Taso Gambobu Kago Dula Dolo Sok Agaram Ayenbe Ok Quality Kadob Rilenga Gortoka Amla Sim Mogarigane Construction Agency Mengabluktu Ok Trans Arunachal Highway Aralo West Yang
ok la parada district anyam apar subon siri lo siri lok inrikerik silado ba amla 2022-23 anyi ogo subon siri birisim modobe tolik jitu tangadnun galoming kenagom sim akaswani itanagar lok tapadu la parada district daru circle lo gap ऑफ रोड चैलेंज के चैप्टर 2.0 सिम बासर एमएलए न्याबजने दर्चिब जंदा का तोमला रिरब मोका ओके टूरिज्म होन ऑफ रोड ड्राइविंग स्किल्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस ओके अरुणाचल ग काकेन तैनम नीगादम कातम ततम नाम लगा बसिम एडवेंचर सिम ग्रीन एडवेंचर पार्क गैप दोनी लोम लगा ब रिगदु ओके असम मेघालय ओके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लोग पार्टिसिपेंट्स गद पुकुम सिला ऑफ रोडिंग चैलेंज सिम रिका सिन्यादु तावांग डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल लोमेरो क्वार्टरली डीसीसी डीएलआरसी मीटिंग के बाद डिप्टी कमिश्नर तावांग नामग्याल आंगमोब दुगका गवर्नमेंट स्कीम्स गद लोग रिलेन मेनलेन नाम अबागदम के बासोगो पारजू सिन्या दुला डिस्ट्रिक्ट लोक क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशियो सिगिम आल्डो ब्रिगमेंग से अबागदम चिन दुदुम सोगो पारजू सितु ओके डेवलपमेंटल ओके लाइवलीहुड ओरिएंटेड स्कीम का दिसिम डिस्ट्रिक्ट लो आल्डो रिलिक मेन लग गनाम लगा ब डिपार्टमेंट ओके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का द बाकें दोला आगे रिबाम नाम सिगी दिनचिरु दे दक अम्ला कबासोगो दिसिब दिनचिजाब मेंतु ಕ ಸಿರ್ಗ ಗಲೋಮೆಂಕೆ ನಗುಮ ಅಗ

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे कालो दालेक में हमारी न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपकी दोस्त और इस खूबसूरत सुबह की आपकी साथी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर का मौसम देखकर दिल खुश हो गया। इतना हसीन और प्यारा वेदर है आज कि मैं आपको क्या बताऊं। सच कहूं तो मेरे मन कर रहा था कि काश मैं सब छोड़कर बाहर एक लंबी वॉक पर निकल जाऊं या थोड़ी देर बैठकर एक्सरसाइजेस कर लूं, पर क्योंकि अभी मैं स्टूडियो में हूं आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। पर हां, मैंने सोचा है कि मैं इवनिंग में पक्का एक वॉक पर निकलने वाली हूं। मौसम इतना सुहाना है तो क्यों ना आप हम अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। आज का हमारा ये सेगमेंट पूरी तरह से डेडिकेटेड है योगा एक्सरसाइजेस और हेल्थ टिप्स के लिए, और इस बेहतरीन मौसम की शुरुआत हम करेंगे योगा के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगा आसन की जो हमारे डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है भुजंगासना, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। आजकल हम सभी का बैठने का वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे स्पाइन रिजिड हो जाती है और बैक पेन की प्रॉब्लम आने लगती है। भुजंगासना करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास रखें और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड्स इस पोजीशन में होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। ये आपकी स्पाइनल कोर को फ्लेक्सिबल बनाता है और बैक मसल्स को स्ट्रांग करता है। इसके साथ ही इस साफ और ताजा हवा का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अपनी राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें और लेफ्ट से गहरी सांस लें, फिर लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़ें। ये प्रोसेस कम से कम 10 से 15 मिनट दोहराइएगा। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और स्ट्रेस को पूरी तरह से दूर रखता है। इस सुहाने मौसम में घर की खिड़की खोलकर या बालकनी में बैठकर इसे करने से आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील

वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी आप अभी भी मेरे साथ हैं। मौसम के साथ साथ अगर हम कल की बात करें तो जो कल बन कॉल था वो आप सभी के लिए कैसा रहा? आप सबने इस दिन को किस तरह बिताया? क्या इसका कुछ यूजफुल इस्तेमाल किया भी नहीं? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स तो कल काफी खुश रहे होंगे क्योंकि उन्हें पढ़ाई से और स्कूल कॉलेज से थोड़ा ब्रेक मिल गया होगा।

हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सभी एम्प्लॉयज भी थोड़े रिलैक्स होंगे क्योंकि रोज की भागदौड़ से उन्हें थोड़ा सुकून मिला होगा। अगर आप मुझसे पूछो तो ऑनेस्टली मुझे तो कल ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मेरे लिए कल का दिन बड़ा ही रिलैक्स रहा। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि मुझे आज आप सबसे इस तरह बातें करने का और कनेक्ट होने का मौका मिल गया। वैसे जब मुझे ऐसी छुट्टी मिलती है ना, तो मैं घर पर रहकर बस चिल करती हूँ, अपनी फेवरेट कंबल ओढ़कर नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा सीरीज बिंज वॉच करती हूँ। मुझे बड़ा सुकून मिलता है ऐसा करने में, और इसके साथ ही फैमिली के साथ भी एक अच्छा फन टाइम स्पेंड हो जाता है, जो रोजमर्रा की बिजी लाइफ में बड़ी मुश्किल से होता है। आप लोगों ने कल का दिन कैसे बिताए मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुछ जरूरी एक्सरसाइजेस की। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि डेली जिम जाने का या हैवी इक्विपमेंट्स यूज करने का वक्त नहीं मिल पाता। दोस्तों, फिटनेस के लिए जिम जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप घर पर ही बॉडी वेट स्क्वाट्स और प्लैंक से शुरुआत कर सकते हैं। स्क्वाट्स करने के लिए आप अपने पैरों को कंधों जितना दूर खोलकर खड़े हो जाइए, और जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं ठीक वैसे ही अपने बॉडी को नीचे लेकर आइए और फिर ऊपर उठे। इसके 15-15 के 3 सेट्स करें। ये एक्सरसाइज आपके लेग्स, थाइज और लोअर बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाती है और बैलेंस इम्प्रूव करती है। इसके बाद बात करते हैं प्लैंक की, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ यानी पैर के मसल्स के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। पुशअप्स पोजिशन में आकर अपनी कोहनियों के बल पर पूरी बॉडी का वेट होल्ड करें। ध्यान रखिए कि आपकी बैक बिल्कुल सीधी हो। शुरुआत में इसे 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। यह आपके पोस्चर को सही करता है और बेली फैट को कम करने में बहुत मदद करता है। घर पर सिर्फ 20 मिनट निकलकर अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। इन एक्सरसाइज के बारे में सोचिए। तब तक सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गाना।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। कल शाम की एक बहुत ही प्यारी बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कल शाम को मैं अपने दो को वॉक पर लेकर गई थी। अब क्योंकि कल बंद कॉल था तो लोग घरों से बाहर निकले हुए थे और हमारा लोकल पार्क पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। वहां का नजारा देखकर सच में दिल को बहुत सुकून मिला। कुछ लोग वहां बड़ी लगन से एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ लोग मेरी ही तरह अपने डॉग्स को वॉक पर लेकर आए थे ताकि उनके पेट्स वहां खुले मैदान में थोड़ा खेल सके, थोड़ा एंजॉय कर सके। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? बहुत से माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे ताकि वो बच्चे हमारे अरुणाचल की उस प्योर और पॉल्यूशन फ्री हवा को एंजॉय कर सके जो आज के वक्त में बाकी शहरों में मिलना नामुमकिन है। इतना सच्चा और पॉजिटिव माहौल देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। इसे खूबसूरत वाइब्स के साथ अब वक्त हो गया है हमारे आखिरी सेगमेंट का, जहां हम बात करेंगे कुछ बेहद जरूरी और डिटेल हेल्थ टिप्स की।

पहला टिप्स है प्रॉपर हाइड्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। मौसम बदल रहा है और हम अक्सर काम के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हैं। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। एक बोतल पानी में थोड़ा लेमन, कीरा और पुदीना के पत्ते डालकर रख दें। ये पानी न सिर्फ आपको हाइड्रेट रखेगा बल्कि आपकी स्किन को क्लियर करेगा और बॉडी के सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। दूसरा टिप्स है डिजिटल डिटॉक्स और स्लीप हाइजीन। कल हम सब ने छुट्टी एंजॉय की, नेटफ्लिक्स देखा, फोन चलाया, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखें। सोने से ठीक 1 घंटे पहले अपने फोन, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन को बिल्कुल बंद कर दें। इन स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट्स हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करती है और हमारे स्लीप साइकिल को खराब करती है। अगर आप 1 घंटे पहले स्क्रीन दूर रखेंगे तो आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद आएगी और अगली सुबह आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। तीसरा टिप्स है लोकल और ऑर्गेनिक डाइट। दोस्तों, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे अरुणाचल में इतनी फ्रेश, ऑर्गेनिक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती है। अपनी डेली डाइट में प्रोसेस या पैकेट फूड को कम करें और इन लोकल फ्रेश सब्जियों और फ्रूट्स को शामिल करें। इनमें नेचुरल विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, इस हसीन मौसम का लुफ्त उठाइए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर, अरुण एफएम 103.1 MHz। तो दोस्तों, छोड़ जाती हूँ आपको इस प्यारे से आखिरी गाने के साथ।

दोस्तों ये था सुबह सवेरे, उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने आप को थोड़ा और फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे आपातनी श्रोताओं का कार्यक्रम।

चा हरापा लोपाला मत गांधीनगर लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सी होका अबजे डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट मसानेमी फाउन्डेसन स्टोन हाला मसाको आता हो याला तु हो बिला बुलो मते कोला पब्लिक रैली इलाका मको हो लोला मत सका प्रोजेक्ट मसाने से तकोला हेला अलम पुल क्रोरपा मकेंदो हाला लुको दो मिस्टर सालो कोला गवर्नमेंट गंदा का बॉर्डर आता हो अगो हो कम्यू आपा मा पका आया बो आतामी आया पका बिला मोगो लुगो मुलाम दासाने में मबिताली हाला लुतोला दो के हाला लुकोला हरापा मोलो बाला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अनो निब्यापा लांग के हेक्टर्स गिरी में बिला मको होपा अनो अयादो हाला असंदला लुगुने हाला लुकोदोता इंडिया ला चाइना ने गंदा पोने का चिमी पका सांसुको पा वोडर डली होटर गैस पासु में मम आदो पालुसुला मोने हिंखाए लड़ोंगों ने पा दुको में कमु को वर्किंग मेकानिज्म कंसल्टेशन हो कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना अफेयर्स हला वेजें हो का लुरु सलामत एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हलु कोला मोलो का लुरु सने हु आयाने आयाने होटर आयाने दोहेंदो हला मोने डिलिमिटेशन बॉर्डर मैनेजमेंट मेकानिज्म बिल्डिंग हो क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन से का तंका पुगो हो लोड सलामत दुकुम को हो अन्यरो साइड डाली हो तल सलामत हला लोको दोता इंडिया हो बुलियो सिंगापुर हो अनो हेम्पे न्याला मुन्यात सो का खेरी न्याला का आन्याबो आतां हो जितिन न्याला मुको हो पा लक्ष्य सेन पीवी सिंधु मेन्स डबल प्योर हो का खेलने चिराग सेटी हो सेटवेक सेराज रंकी रेडी मिक्स डबल होक ड्रुव काफिला हो तनिसा ग्रस्तो सकाता मलांजा जितिला क्वार्टर फाइनल हो चान्या दोको हलालुकोला सिंधु मो जापान होक रिको गुंजी में वुमेन सिंगल हो रन रोलिया हेला रॉन्ग खे हो जितिला हरापा मो क्वार्टर फाइनल हो साउथ कोरिया होक अंसे योंग का आगे हो खेलेमोला मुकिंदो हलालुकोदो तावांग का डिप्टी कमिश्नर नामगेल अंगमो बलियो डीसीसी डीएलआरसी का क्वार्टरली डुकुम मुसुमे मगला मोलो तावांग डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल हो मला सका दुकुम में कम को हो अब जे गवर्नमेंट स्कीम अतामे बिलोम तो कोला का दो को हो ने ने ना मुन्या तो कुने हो आज ने हो ने पे मकिंडो ने है का अतामे तका सिन्यला तो कोया ने का पुगो हो तेरा लुसुला डिस्ट्रिक्ट में कपाने मगोलोगो में आया पा मुचाबला तो कोमेतर मुलाला मुन्यादो पा हलालुसोला मुने हलालुकोदो कमी हो डीसी डिपार्टमेंट ला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निमी मुबासला लेम्बा में का हाथा जाग सको हो मला इसके मित्र अनु अयापा मुगो हो मला हाथा संचय गको पा अनु अयादो हलालुबने लालुकोदो गाफ ऑफ रोड चैलेंज चैप्टर 2.0 मिका दारी होका मुको हो बासर का एमएलए न्याबे जेने दिर्ची बिलो फ्लैग ऑफ में भी बने हाला लुको दो सिम कम गने से ग्रीन एडवेंचर पार्क अलोलो है में मिगला मकिन दो मोलो कम गने से एडवेंचर टूरिज्म होने ऑफ रोड ड्राइविंग स्किल हो फोसर एनवायरमेंट मेंटल अवेयरनेस का तमी प्रमोट मिला अरुणाचल प्रदेश का काप्य में का किंडो पहला सकम को हो असम मेघालय हो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट अभी होक आवो मोला मोबोन्या दो हाला लुको दो सी आकाशवाणी ईटानगर जीरो होकला तपाला दो अपर सुबनश्री डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर तासोगम बोबलियो सुबनश्री ब्रिज मिका पुला दो को हो काका हाला कातेला का इनको हो सोका कामने ने गाता में निबिया मजा दो पा लुन्या बने हाला लुकोला सका ब्रिज पुसाने से इन्हें कुने अन्या 2022-23 हो सेंसन मुबुने को ट्रांस अरुणाचल हाईवे के दली होकला मुदोपा सका ब्रिज सीम पे दो कोदा वेस्ट सियांग ला लेफरादा डिस्ट्रिक्ट हो इंडिंग केंदो हाला लुको दो नेशनल वुमेन कमीशन दिल्ली होक हाई लेवल डेलीगेशन बुलियो जीरो हो आदो सो मोलो डिस्ट्रिक्ट हो अयाकोने मुग दुपा हाला लुकोला सका आतामी एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन विजया राहतकर इंगला ए आई का पुगो में लुकोला मोनो से मिने तंपाना अतोका अयापा मला केंदो ने हे मिलुकोला मने हला सुरोकाता ने पुलुका सना हम कने

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.3 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे आपातानी डायलॉग में हमारे न्यूज बुलेटिन, और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट यानी मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट याजू, इस खूबसूरत सुबह के आपके साथी। दोस्तों, हर सुबह जब हम इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आपको दुनिया भर की उन दिलचस्प बातों से रूबरू कराइए जिन्होंने इतिहास को बदला है। आज 29 मई है, तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं विश्व इतिहास यानी ग्लोबल हिस्ट्री के उन बड़े इवेंट्स पर जो आज के दिन दर्ज हैं।

दोस्तों आज ही के दिन पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 29 मई 1953 को ही न्यूजीलैंड से सर एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कामयाबी के साथ कदम रखा और वहां फतेह हासिल की। उनसे पहले किसी ने भी इस चोटी को पार नहीं किया था। उनकी ये सफलता इंसानी हौसले और डेडिकेशन की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। अगर हम इतिहास में काफी पीछे चले तो 29 मई 1453 को सुल्तान महमद दो के नेतृत्व में ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा कर लिया था। इस घटना से 1100 साल पुराने बाइजेंटाइन एम्पायर के अंत हो गया था। कई इतिहास गाकर इसे यूरोप को मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। साइंस की दुनिया में आज के दिन बहुत बड़ा माना जाता है। 29 मई 1919 को एक पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रिटिश साइंटिस्ट आर्थर एडिंगटन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का पहली बार प्रैक्टिकल टेस्ट किया था। उन्होंने ग्रहण के दौरान प्रूव किया कि ग्रेविटी सच में लाइट को बेंड करती है। इस एक टेस्ट ने आइंस्टाइन को रातों रात पूरी दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया था। स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में आज के दिन साल 1999 में स्पेस शटल डिस्कवरी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। डिस्कवरी पहला ऐसा स्पेस शटल बना था जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग यानी जुड़ने का काम पूरा किया था। इस मिशन के जरिए स्पेस स्टेशन पर काफी सारी जरूरी चीजें और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पहुंचाए गए थे। विश्व इतिहास की इन दिलचस्प बातों के बाद अब वक्त है एक सुहाने गीत का। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में आप अभी भी मेरे साथ हैं। ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे प्यारे भारत के इतिहास की। आज 29 मई के दिन इंडियन हिस्ट्री में कौन सी बड़ी घटनाएं हुई है, चलिए उन्हें विस्तार से जानते हैं।

मुगल इतिहास में आज का दिन काफी उटल उतल पुतल बढ़ा रहा था। 1658 को मुगल बादशाह शाहजहां के दो बेटों दारा सिखो और औरंगजेब के बीच आगरा के पास समुद्र में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिखो को हरा दिया था और आगरा के किले पर कब्जा करके खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, जिसे भारत का इतिहास बदल गया। भारत और नेपाल दोनों के लिए गौरव की बात है कि आज के दिन 29 मई 1914 को तेनजिंग नोर्गे का जन्म हुआ था। उन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ली और दार्जिलिंग को अपना घर बनाया। एवरेस्ट फतह करने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया था। उनका जन्मदिन आज पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। आज 29 मई को पूरी दुनिया में यूएन पीस कीपर्स डे मनाया जाता है। आज के ही दिन 1948 में यूएन ने अपना पहला पीस कीपिंग मिशन शुरू किया था। इसमें भारत का योगदान बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया विश्व में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक रहा है, जिन्होंने दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए काफी बलिदान दिया है। भारत की पांचवें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी का निधन आज ही के दिन 29 मई 1987 को हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों

और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने में बिता दिया था। उनके योगदान को याद करते हुए आज देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इतिहास की इन पन्नों की बात चलिए सुनते हैं हमारे इस शो का दूसरा खूबसूरत गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट सेगमेंट में अब वक्त हो गया है हमारे राज्य और देश के आज की बड़ी खबरों पर ध्यान देने का। आज 29 मई 2026 है और चलिए जानते हैं आज के अरुणाचल टाइम्स में कौन सी मुख्य खबरें दर्ज हुई है। एपीटीईए लॉन्चेस नो पे नो वर्क एजुकेशन। हमारे स्टेट के एजुकेशन सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश टीचर एसोसिएशन ने ऑफिशियली अपने नो पे नो वर्क एजुकेशन यानी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी लंबित वेतन और बाकी बातों का भुगतान नहीं किया जाता तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। इस एजुकेशन के कारण राज्य के कई सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया एंड चाइना होल्ड स्टॉक जोन एलएसी एम्फेसिस ऑन बॉर्डर पीस। बॉर्डर सिक्योरिटी और शांति को लेकर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। इंडिया और चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चल रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर पूरा जोर दिया है कि बॉर्डर एरियाज में अमन और शांति बनाए रखना दोनों के लिए बेहद जरूरी है। इस सकारात्मक बातचीत से आने वाले वक्त में बॉर्डर पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी।

0: अरुणाचल लॉन्चेस डिजिटल टीचर ट्रांसफर सिस्टम। हमारे स्टेट के एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली डिजिटल टीचर ट्रांसफर सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब टीचर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होंगे। इसे मैन्युअली होने वाली परेशानियों खत्म होंगी और स्कूल्स में एजुकेशन मैनेजमेंट पहले से काफी बेहतर हो जाएगा। आईसीआर बंद इवोक्स मिक्स रिस्पॉन्स। ईटानगर कैपिटल रीजन में बुलाए गए बंद कॉल को लेकर मिले जुले असर देखने को मिले हैं। कुछ इलाकों में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और दुकानें पूरी तरह से बंद रही, वहीं कुछ जगहों पर जरूरी सेवाओं और प्राइवेट व्हीकल्स की आवाजाही आम दिनों की तरह ही चलती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे कैपिटल रीजन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे और पूरा दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीता। डेम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एमओए साइन। अरुणाचल गवर्नमेंट ने स्टेट में पावर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 1750 मेगावाट के डेम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में हमारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बेहतर करने और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में काफी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अरुणाचल टाइम्स की मुख्य सुर्खियों और आज का दिन का विश्व और देश का इतिहास।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने सरुंगलगतागिन प्रोग्राम को बिन्ताम श्री राजीव राय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेम्पाकुनांग स्वच्छ भारत मिशन 2.0 सम अलरोंब इम्प्लीमेंटेशन दुब रिपेला बेम्पालेंदुकु सेके नंगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन मिलन माजे का अलदों रिलेने सेलिंग गेला रिलायन एला बेम्पादुकु सेके नंगा नी मनंग अकिन गुब बंगतामे सुलारिबोसंग बो लोकानी अल तेने केला बेम्पादुकु चामुला लेखिन नब प्रगति मीटिंग दोंफांगा न्यू दिल्ली लु दोंबाम दुकुला स्टेक होल्डर्स दंगा स्टेट सर ngala state sarkari nga bempa kunam nga modi ni bempa kunam nga solid waste management related infrastructure som la waste processing plants ok govardhan plants som alarong ba milen england chola ribolokan ni alate indikela bempa lenduko so go dongpam sum mokus araso Railways power

स्वागत है आप सबका फिर से आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। आप सभी का स्वागत है फिर से। आप सुन रहे थे तागिन दैलिक में हमारे न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपकी आरजे याजू और अब वक्त हो चला है एक ऐसे सफर पर निकलने का जहां सुर ताल और संगीत का एक अनोखा संगम होता है। जी हां, शुरू हो चुका है आपका खास पसंदीदा और संगीतमय प्रोग्राम सदाबहार। सदाबहार यानी वो गीत जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि हर गुजराते दिन के साथ हमारे दिल के और करीब आते जाते हैं। अगले कुछ मिनटों तक हम और आप मिलकर यादों के उन हसीन पन्नों को पलटने वाले हैं और पुराने दौर के कुछ बेहतरीन नगमों का लुत्फ उठाएंगे। पर संगीत के इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले चलिए बात करते हैं आज के मौसम की। हमारे अरुणाचल इतना बड़ा है और इसकी खूबसूरत वादियों में मौसम का हर रंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं हमारे वेस्टर्न अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट की तरफ और जानते हैं वहां का वेदर कैसा है।

दोस्तों, हमारी राजधानी ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही मौसम बेहद सुहाना और धूप छांव भरा बना हुआ है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा में थोड़ी नमी है और दोपहर बाद हल्के बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे मौसम और भी ठंडा हो जाएगा। अगर हम ऊंचे पहाड़ी इलाके तवांग की बात करें तो वहां आज काफी ठंड है। सुबह का तापमान काफी गिरा हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 14 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और शाम तक बारिश या थोड़ी ठंडी हवाएं चलने का पूरा अनुमान है। जो लोग वहां हैं उन्हें आज थोड़ा गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे।

बमदिला और दिरंग की वादियों में आज सुबह काफी धुंध देखी गई है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से गिरा रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। परफेक्ट हिली वेदर जिसे हम कहते हैं, आज वहां वैसा ही नजारा है। सिपा और उसके आसपास के इलाकों में मौसम थोड़ा गर्म और ह्यूमिड रहेगा। दोपहर के वक्त टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, पर शाम होते होते प्री मानसून शावर्स यानी तेज बौछारों की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी के संग यहां का मौसम आज काफी हसीन है। गिरे जंगल और पहाड़ों के बीच यहां का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ है और दिन भर ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ थोड़ी बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम के इस पहले अपडेट के बाद अब वक्त है सदाबहार का सबसे पहला और बेहद हसीन गीत का। सुनिए ये नगमा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार और मैं हूं आपकी दोस्त आरजी याजू। पहले गाने के सुकून के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अरुणाचल के सेंट्रल और साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के वेदर का हाल जान लेते हैं। हमारा राज्य अलग अलग ऊंचाइयों पर बसा है, इसीलिए मौसम के बदलाव को समझना बहुत जरूरी है।

हमारी प्यारी जीरो वैली में आज मौसम बेहद ठंडा और खुशगवार है। जीरो का मैक्सिमम टेम्परेचर आज 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है और बादलों के आवाजाही लगी हुई है। वॉक पर जाने के लिए या बस एक कप गर्म चाय के साथ इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आज का दिन परफेक्ट है। कई पन्योर और पापुमपारे, यहां का मौसम आज मिला जुला रहेगा। सुबह हल्की धूप खिली है और पर दोपहर बाद बादल गिरे हो सकते हैं। टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी महसूस हो सकती है। कुरुंगकुमे और करातादी, इन दोनों पहाड़ी जिलों में आज मौसम थोड़ा मूडी बना हुआ है। कुछ इलाकों में सुबह तेज धूप थी पर अब धीरे धीरे बादल गिर रहे हैं। यहां का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और शाम को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दापोरिजो में आज मौसम काफी साफ और सुहाना है। सुबह हल्की धूप के साथ शुरुआत हुई है और दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। सुबनसिरी नदी के किनारे आज हवा में एक अलग ही ताजगी है। बासर और रिकवरी के इलाकों में आज मौसम थोड़ा गर्म रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसलिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए। मौसम की इन बातों के बीच चलिए दोबारा लौटते हैं संगीत के उस सुनहरी दुनिया में। सुनिए ये दूसरा एवरग्रीन गाना।

0: तो दोस्तों ये था हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के मौसम का पूरा हाल। चाहे आपके यहाँ ठंड हो, धूप हो या बारिश, मौसम जो भी हो, संगीत का मजा कभी कम नहीं होता। अपना ख्याल रखिए, इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। दोस्तों ये था सदाबहार। उम्मीद है इन सुरों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलोंग केंद्र से समाचार।
1: कल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुफ्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को जाते। जब मिल जाएगा सबको अपना मित्र, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee

आकाशवाणी ईटानगर RNFM 103.1 MHz पर दिल्ली से अभी ताजा समाचार खत्म हुए हैं और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा सफर का, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया का सबसे बड़ा और ताजा शो फिल्मी गपशप।

दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा माफीनामा आप सभी के लिए। स्टूडियो में मौसम की बातों में और आप सभी के साथ खोए खोए मैंने गलती से गलत प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। अब शुरू होगा हमारा अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

0: दोस्तों, एक नई सुबह, नए विचार और संगीत के इस ताजे तरंग के साथ मैं आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ आप सभी के आपके अपने सपने अपने सबसे चाहते इस कार्यक्रम का, हेलो ईटानगर में। दोस्तों, हर सुबह जब हम इस मंच पर मिलते हैं तो ख्याल यही होता है कि कुछ ऐसी बातें की जाएं जो हमारे दिल को छुए और हमारी सोच को एक नई दिशा में दिशा दे। आज जब 29 मई का यह दिन हमारे सामने खड़ा है तो ये अपने साथ पूरे विश्व के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण पन्ना लेकर आया है। आज पूरी दुनिया में एक सुर में माना जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, यानी उन शांति सैनिकों का दिवस जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत को बचाने का संकल्प लिया। चलिए, आज इस सफर की शुरुआत हम इसी ज्ञानवर्धक जानकारी से करते हैं कि आखिर इस महान मुहिम की बुनियाद कैसे और कब रखी गई।
1: गुड इवनिंग, हेलो ईटानगर।

दोस्तों बात है साल 1948 की, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर टू के जख्मों से उबर नहीं रही थी। तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 29 मई 1948 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने मिडिल ईस्ट में अरब इजरायली युद्ध के बाद बने तनाव को शांत करने और सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए पहला शांति मिशन भेजा, जिसे यूएनटीएसओ यानी यूएन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। तब से लेकर आज तक इस तरीके के काफी मिशन भेजे गए, लेकिन इस दिन को एक उत्सव और सम्मान के रूप में मनाने का फैसला साल 2002 में लिया गया, जब यूएन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पास करके हर साल 29 मई को इस महान दिन के लिए चुन लिया। इसका मकसद बहुत साफ था, उन लाखों मर्द और औरतों के जज्बे को सलाम करना जो अपना घर बार छोड़कर अनजान देशों में शांति स्थापित करने जाते थे, और उन वीरों को याद करना जिन्होंने इस राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास की इस गहराई को महसूस करते हुए चले सुनते हैं हमारे इस नए सफर का पहला बेहद सुकून भरा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। दोस्तों, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस यानी महत्व को समझे तो ये शांति सैनिक जिन्हें दुनिया उनके नीले हेलमेट से पहचानती है, उन इलाकों में उम्मीद की किरण होते हैं जहां लोग दंगे, युद्ध और भूखमारी से जूझ रहे होते हैं। ये सिर्फ वहां बॉर्डर पर खड़े नहीं होते, बल्कि वहां लोकल इलेक्शन करवाने, हॉस्पिटल चलाने और आम लोगों तक अनाज पहुंचाने में सबसे आगे होते हैं। इनका होना ही इस बात का सबूत है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। और ख्याल जब शांति यानी पीस का आता है तो मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से हमारे कल के दिन पर चला जाता है। कल हमारे ईटानगर कैपिटल रीजन में 24 आवर बंद गोल था, और जब भी ऐसा कोई दिन होता है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक पल के लिए थम सी जाती है, सड़कें खाली हो जाती है और घरों में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। मैं कल पूरा दिन घर पर ही थी और यही सोच रही थी कि हौसले, आपस के विश्वास और शांतिपूर्ण बातचीत से अगर किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे को सुलझाया जाए तो वो हमेशा के लिए हल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हमारे राज्य के जो भी मुद्दे हैं वो काफी जल्द और शांतिपूर्ण ढंग से रिजॉल्व हो जाए। दोस्तों, आपस में शांति बनाए रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या आपको पता है? क्योंकि ये इंसानी दुनिया किसी मशीन से नहीं, बल्कि हम और आप जैसे इंसानों के आपस के रिश्तों से चल रही है। अगर हम इंसान ही एक दूसरे के बात को ठंडे दिमाग से नहीं समझेंगे तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढे, ये हमारे अंदर से शुरू होती है। जब हम आपस में मिलकर रहते हैं तभी हमारा अरुणाचल मजबूत बनता है। इस गहरी और प्यारी सोच के साथ चलिए थोड़ा रुक करते हैं और संगीत की सुनिए दुनिया की तरफ, सुनिए ये दूसरा गाना।

तो दोस्तों, आज के इस हेलो ईटानगर सेगमेंट में हमने जाना कि शांति की असली अहमियत क्या होती है। कल का बंद कॉल हमें याद दिलाता है कि लोकल लेवल पर आपस का भाईचारा कितनी जरूरी है, और आज का ये यूएन पीस कीपर्स डे हमें सिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर शांति के लिए कितने बड़े बलिदान दिए जाते हैं। हमें हमेशा अपने दिलों में इसी अमन, प्रेम और एकता को जिंदा रखना है, क्योंकि आखिरकार ये इंसानी दुनिया हम इंसानों के आपस के सुकून से ही बेहतर बनती है। मौसम बेहद हसीन है, इस सुहाने दिन का पूरा लुफ्त उठाइए। अपने परिवार के साथ एक अच्छा फन टाइम स्पेंड कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, ये था हेलो ईटानगर। उम्मीद है आपने सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी में ताजा समाचार। कहीं जाइएगा नहीं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की उम्मीदें।
1: ये विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। गृह मंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और

0: वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. Union Home Minister Amit Shah has said that the center's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: On the second day of his Gujarat tour, Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically sensitive areas along the international border in Kutch today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. Air India's extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi unit president. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP chief and Keval Singh Dhillon will be the new president of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP president. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary today. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. And the examination will be, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid ul-Azha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. And in IPL cricket, Gujarat Titans and Rajasthan Royals will meet in the all-important qualifier two at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh, this evening. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर के सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपके आरजे याजू का प्यार भरा सलाम। दिल्ली से अभी अभी ताजा समाचार खत्म हुए हैं और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा सफर का, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया का सबसे बड़ा और ताजा शो फिल्मी गपशप।

आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज की, नई बॉक्स ऑफिस रिलीजेस की, ओटीटी के बैंकिंग अपडेट्स की और खान्स 2026 से आने वाले सुपर हॉट गॉसिप्स की। पूरी शो में हम कुछ बेहतरीन गाने भी सुनेंगे, तो कहीं मत जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले गाने के साथ, फिर मिलते हैं ताजा खबरों के बाजार में।

दोस्तों स्वागत है आप सबका फिल्मी गपशप में। सबसे पहले और सबसे गर्म खबर आ रही है रणवीर सिंह को देखकर। इंटरनेट पर इस वक्त आग लगी हुई है क्योंकि रणवीर सिंह के डॉन ट्री से एग्जिट होने की खबरों ने सबको चौंका दिया है। अब इसमें एक बड़ा धमाका ये हुआ है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिनी एम्प्लॉयज ने रणवीर सिंह पर एक इंडस्ट्री वाइड बैन लगाने का रिपोर्ट दिया है क्योंकि उन्होंने अचानक प्रोजेक्ट से बैक आउट किया। इतना ही नहीं, खबर है कि फरहान अख्तर ने उनसे 45 करोड़ रुपीस की डैमेजेस की डिमांड की है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने डॉन ट्री के टीजर को लेकर फैंस के बीच में एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया है। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ फिल्म बॉडीज इस पर रिएक्ट कर रही है। शोभा दे ने तो यहां तक कह दिया कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के दिल्ली जिमखाना है। क्या आपको लगता है कि रणवीर के बिना डॉन ट्री अधूरी है? और चलिए इसी बात पर सुनते हैं अगला धांसू गाना और फिर बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के नए धमाके की।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों, बात करते हैं इस हफ्ते की फ्रेश थिएटरिकल रिलीजेस और मूवी रिव्यूज की। थिएटर्स में इस वक्त धूम मचा रही है चांद मेरा दिल, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल्स में हैं। ये एक इंटेंस यूनिवर्सिटी लव स्टोरी है जिसको

मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। कुछ लोग केमिस्ट्री को हिट बता रहे हैं तो कुछ स्टोरी को स्लो। मजे की बात यह है कि सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से लगभग 96 सेकंड के किसिंग सीन्स पर कांचू चलाकर उन्हें ट्रिम करने को कहा है, लेकिन अनन्या पांडे को उनके भरतनाट्यम सीन के लिए थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल और वो नेगेटिव ट्रोल्स पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही थिएटर्स में पिछले हफ्ते की रोमांटिक कॉमेडी पति पत्नी और वो दो भी चल रही है, जिसमें आयुष्मान खुराना, वामिका गप्पी, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह हैं। ये फिल्म स्लो और स्टेडी चलते हुए 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन पर पार कर चुकी है और वहां साउथ से मोहनलाल की दृश्यम 3 भी चल रही है, जो बहुत बड़ा बस बना रही है और बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। चलिए ऐसी फिल्मी मूड को थोड़ा और रोमांचक बनाते हैं इस अगले खूबसूरत गाने के साथ।

दोस्तों अब रुक करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, क्योंकि अगर आप इस वीकेंड घर बैठकर बिंज वॉच करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत कुछ नया है। प्राइम वीडियो पर एक बड़ी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है सिस्टम, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका लीड रोल्स में है। इसको अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया है और ये एक धांसू कोर्टरूम ड्रामा ट्रेलर है जहां सोनाक्षी एक लॉयर बनी है। नेटफ्लिक्स पर

अगर आपको रियलिटी शो पसंद है तो देसी ब्लिंक आ चुका है, जिसमें करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दुबई के बिलियनर्स और बॉलीवुड सेलेब जैसे टाइगर श्रॉफ और शिल्पा शेट्टी के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैंने भी देखा, और अगर ऑनेस्ट रिव्यूज दूं तो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। Zee5 पर अंशुमन पुष्कर की रिवेंज थ्रिलर सीरीज सतरंगी भी स्ट्रीम हो रही है। और हाँ, नेटफ्लिक्स पर इस महीने की एक और बड़ी रिलीजेस कर्तव्य चल रही है, जो कि एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर है, जिसको प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने, और इसमें लीड रोल में है सैफ अली खान। इसके अलावा प्राइम वीडियो पर सिराजुल सीजन 2 का क्रेज चल रहा है, और अगर आपको स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो टेनिस लेजेंड राफेल नादल पर बनी सीरीज राफा भी आज ही स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है। बिंच वॉच की प्लानिंग कीजिए, तब तक सुनिए ये सुपरहिट ट्रैक।

दोस्तों, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, बॉलीवुड गॉसिप्स और कंट्रोवर्सीज की। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा फैन वार चल रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट के बीच। दोनों हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कार्पेट पर नजर आए, जहां आलिया भट्ट ने सॉफ्ट ब्लश पिंक बॉडीकॉन गाउन पहना था, वहां ऐश्वर्या राय ने रॉयल ब्लू शिमरिंग गाउन में आग लगा दी। इंटरनेट पर दोनों के फैंस आमने सामने हैं कि किसने लुक को सबसे बेहतर तरीके से एड किया। कुछ लोग आलिया को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ ऐश्वर्या के रॉयल ओरा की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। खान से ही एक और इंडियन एक्ट्रेस सेजल शर्मा भी अपने एलिगेंट रेड आउटफिट में स्पॉटलाइट चुरा रही है। एक और ताजा इंटरनेट सेंसेशन की बात करें तो डेविड धवन की आने वाली फिल्म को लेकर लोग पीक ब्रेन रोट कह रहे हैं, क्योंकि 40 ईयर ओल्ड मोनी रॉय इसमें 39 ईयर ओल्ड वरुण धवन की मां का रोल प्ले कर रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत मीम्स बन रहे हैं।

दोस्तों, गोसिप का सिलसिला यही नहीं रुकता। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है नोरा फतेही को लेकर, जिनको उनके गाने सरकार चुनर के वल्गर लिरिक्स की वजह से वुमेन कमीशन ने सम्मन किया था। नोरा ने अब इस पर पब्लिकली माफी मांगी है और कहा है कि उनका किसी को ऑफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वहां दूसरी तरफ वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने वरुण धवन के नए गाने चुनरी चुनरी के रीमेक पर चल रहे क्रिटिसिज्म को तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि गाना आज भी सुपरहिट है और रहेगा। इन सबके बीच पूजा भट्ट ने भी एक पुरानी बात शेयर की है जो ट्रेंड कर रही है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता महेश भट्ट ने सोनी रजदान से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उन्होंने कभी उनकी मां का साथ नहीं छोड़ा। और दिलजीत दोसांझ के शो से कुछ फीमेल डांसर्स ने लोअर पे और अनफेयर ट्रीटमेंट का आरोप लगाकर शो छोड़ दिया है, जो इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चलिए इस बात पर सुनते हैं हमारा अगला गीत।

बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपी सिटी आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश जारी किया है।

0: of the law. Thank you.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कपशप। अब बात करते हैं उन हसीनों की जो नेटिजन्स को खड़ा खोटा सुनाने में पीछे नहीं हटी। शमिता सेट्टी ने हाल ही में एक ट्रोल को बहुत बड़ा सुनाया, जिसने उनके 47 की एज में सिंगल होने पर सवाल उठाया था। शमिता ने पलट कर पूछा, आपने शादी करके क्या उखाड़ लिया? वहां मलाइका अरोरा ने भी ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बोलते हुए कहा कि इंटरनेट बहुत लाउड है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा समझदार हो। इसके साथ ही रवीना टंडन ने भी हाल ही में एक क्रेजी इंसिडेंट रिकॉल किया, जब उनके घर के बाहर एक बेकाबू मोफ आ गई थी और उन्होंने एक आदमी को शर्ट से पकड़कर बाहर फेंक दिया था। सेलेब्स अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। चलिए माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हुए और सुनते हैं एक रोमांटिक ट्रैक।

दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं फिल्मी गपशप के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन जाने से पहले एक ताजा खबर आपको और दे दूं। इंटरनेट पर इस वक्त आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ की एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सच जैसे लग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में होने वाला है या फिर ये कोई एआई का कमाल है। वहां दूसरी तरफ बॉलीवुड के यंग स्टार ईशान खट्टर ने देश का नाम रोशन किया है। उन्हें बियरविट्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के ज्यूरी पैनल में शामिल किया गया है, जहां वो क्रिश्चियन स्टीवर्ट जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ये सच में हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो उनकी सुपरहिट हॉरर कॉमेडी भूत बंगला, जो अप्रैल में आई थी, अब 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों आज के फिल्मी गपशप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे बहुत सारी ताजा खबरों और नए गॉसिप्स के साथ। तब तक आकाशवाणी ईटानगर सुनते रहिए। छोड़ते जा रही हूँ आपके आपको इस आखिरी और शो का सबसे बेहतरीन गाने के साथ।

0: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके।
1: दोस्तों, ये थी फिल्म में कपशप। उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट दोस्त। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
0: जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन BSF को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते।

0: मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
2: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Keval Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping

0: दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। दिल्ली से अभी अभी ताजा समाचार का सिलसिला खत्म हुआ है और जैसे कि आप सब जानते हैं अब वक्त हो चला है इस खूबसूरत दिन की आखिरी पड़ाव का। ये एक ऐसा शो है जहां माइक्रोफोन मेरा जरूर है लेकिन मूड और मर्जी पूरी तरह से आपकी होती है। जी हां, शुरू होने जा रहा है आपका सबका सबसे पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। आपके खत, आपके मैसेजेस और आपके पसंद के गाने, तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं रिक्वेस्ट का ये प्यारा सा पिटारा।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: तो चलिए आज की पहली रिक्वेस्ट आ रही है हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर की तरफ से। लंखंगसम कार्बी आंगलोंग से हमें याद किया है तेंसोन के आर रोजमेरी तिरुम्पे ने। कार्बी आंगलोंग के हसीन पहाड़ों से ईटानगर तक का ये म्यूजिकल कनेक्शन सच में कमाल है और इन्होंने फरमाइश की है एक बेहतरीन गाने की फिल्म जिंदा दिल से। फिल्म का नाम ही जिंदा दिल है और हमारे श्रोताओं का दिल भी बिल्कुल जिंदा दिल है। तो तेंसोन के आर रोजमेरी तिरुम्पे जी, आपकी इस प्यारी सी फरमाइश के नाम सुनिए ये बेहतरीन गाना।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर पर रेडियो ऑन डिमांड और मेरे पास इस वक्त जो अगला मैसेज है उसमें ढेर सारी मोहब्बत और बहुत सारी दुआएं हैं। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है सुप्रिया ने बिहार से और उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है विकास कसवान के लिए क्योंकि आज विकास का बर्थडे है। सुप्रिया ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा है। वो कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे बाबू, विशिंग यू अ फैंटास्टिक ईयर अहेड फिल्ड विद लव हैप्पीनेस सक्सेस एंड टुगेदरनेस। वैसे बाबू के लिए इतना स्पेशल और इतना प्यारा मैसेज है ये। विकास जी आप बहुत ही लकी है कि बिहार से आपके लिए ईटानगर के रेडियो पर इतनी सुंदर विशेष आ रही है। सुप्रिया की तरफ से और पूरी आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। गॉड ब्लेस यू बोथ। तो सुप्रिया की ऑन डिमांड स्पेशल डेडिकेशन पर विकास के बर्थडे को और हसीन बनाने के लिए सुनिए ये खूबसूरत गाना गहरा हुआ।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

दोस्तों, अब हमारा म्यूजिकल ट्रैक चल पड़ा है असम की तरफ, गोलाघाट असम से। हमें खत लिखा है रोमेश पात्रो और उनकी फैमिली ने। रोमेश जी और उनकी फैमिली ने मिलकर ये गाना अपने सभी प्यारे दोस्तों के नाम डेडिकेट किया है। दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है, पूरी फैमिली मिलकर दोस्तों को याद कर रही है, ये देखकर दिल खुश हो गया है। उनकी फरमाइश है कि ऐसी एवरग्रीन मेलोडी की जो हम सबके बचपन और यादों से जुड़ी है, तो रोमेश पात्रो जी और उनके दोस्तों के लिए पेश है फिल्म जीवन मृत्यु से मोहम्मद रफी और लता जी की का गाया ये सुनहरा गाना चिलमिल सितारों का आंगन होगा। सुनिए और जिए इस सुनहरे पल को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अगली रिक्वेस्ट हमें आई है हमारे बिल्कुल हार्डकोर यानी डेली लिसनर्स की तरफ से। जी हाँ, कार्बी आंगलोंग से जोगेंद्र रोंगपी और उनकी पूरी फैमिली रोज हमारे शो के साथ जुड़ती है। आप जैसे श्रोता ही तो आकाशवाणी ईटानगर की असली ताकत है, जो रोज अपना इतना प्यारा वक्त हमें देते हैं। जोगेंद्र जी और उनकी फैमिली ने स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरा नगमा सुनने की ख्वाहिश जताई है, तो हमारे इस प्यारे डेली लिसनर्स परिवार के नाम लता जी की मधुर आवाज में पेश है फिल्म आपकी कसम से ये संगीत, तेरे कारण मेरे सजन।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका फिर से रेडियो ऑन डिमांड में। अगला मैसेज आई है एक ऐसी लिसनर का जो हमारे साथ रोज जुड़ती है। हम

बात कर रही हैं ज्योति सुरीन जी की। ज्योति, थैंक यू सो मच रोज हमारे शो सुनने के लिए। आपका ये लगातार प्यार हमारे चेहरे पर हमेशा स्माइल ले आता है। ज्योति ने हमसे डिमांड किया है नए जमाने का एक बहुत ही कैची और रोमांटिक ट्रैक फिल्म दिल मांगे मोर से। इस फिल्म के गाने जब भी बजते हैं पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो ज्योति, स्पेशली आपके लिए, आपके दोपहर को और बेहतर बनाने के लिए ये रहा आपका फेवरेट ट्रैक, कुबकू मुझे तू नजर आई।

दोस्तों अगली फरमाइश लेकर आए हैं हमारे एक और बहुत ही प्यारे लिसनर बाइकोन मुंडा। बाइकोन ने ये गाना दोस्ती के नाम किया है। उन्होंने अपने सभी जिगरी दोस्तों को याद करते हुए ये मैसेज भेजा है दोस्तों के लिए। ऐसी धांसू चॉइस, क्या बात है बाइकोन जी। रितेश देशमुख और जिनेलिया की फिल्म तुझे मेरी कसम का ये गाना जब आया था तो हर आशिक और हर दोस्त की जुबान पर था। तो बाइकोन मुंडा और उनकी पूरी दोस्तों की टोली के लिए पेश है ये सुपर रोमांटिक और नॉस्टैल्जिक सॉन्ग पल पल सोच में आना। सुनिए और अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट कीजिए।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्टूडियो में सुप्रिया का मैसेज आया है बिहार से, और उनका मैसेज पढ़कर मेरा तो दिल ही पिघल गया। बात ऐसी है कि हमारी प्यारी सुप्रिया ने जो गाना अभी थोड़ी देर पहले अपने स्पेशल पर्सन विकास कासवान के लिए डेडिकेट किया था ना, विकास जी किसी वजह से उस वक्त रेडियो के पास नहीं थे और वो स्पेशल बर्थडे सरप्राइज उनसे मिस हो गया। अब ऐसी मोहब्बत और इतने प्यारे बर्थडे सरप्राइज को हम अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर जन्मदिन तो साल में एक बार आता है। सुप्रिया, बिल्कुल आप उदास मत होइए, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है और हम विकास जी का जन्मदिन बिल्कुल फीका नहीं होने देंगे। विकास काशवान जी, अगर आप अब मुझे सुन रहे हैं तो अपनी सीट पर आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिएगा। सुप्रिया आपको एक बार फिर से कह रही है कि हैप्पी बर्थडे बाबू, विशिंग यू अ फैंटास्टिक ईयर अहेड फिल विद लव, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड टुगेदरनेस। तो स्पेशली सुप्रिया के कहने पर उनकी इस बेपना मोहब्बत के लिए और विकास जी के इस जन्मदिन को डबल स्पेशल बनाने के लिए हम ये गाना एक बार फिर से प्ले कर रहे हैं। सुनिए सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए गहरा हुआ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
1: सुर में गाना सीखिए पधानी साहब के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम।

4:20 तक आरजे लूसी के साथ, तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में

0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी सीईपीए समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर विश्वभर में सेवारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के वास्ते संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवारत बहादुर सैनिकों की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 352 अंक बढ़कर 76,220 जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक की वृद्धि के साथ 24,002 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary.
2: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. In view of the increased passenger rush during the summer holidays, Jammu Division of Northern Railway has decided to add extra coaches to two trains for the convenience of passengers. One additional third AC coach will be temporarily attached to train number 12426, Jammu Tawi New Delhi Rajdhani Express, from June the 6th to 12th. Similarly, one sleeper class coach will be added to train number 04082, Sri Mata Vaishno Devi Katra New Delhi Express, from June the 6th to 13th. Air India has extended suspension of its flight to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today paid tribute to United Nations peacekeepers.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर, जहां हर गाना लेकर आता है यादों का एक नया रंग। आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं ये फिल्म, जिसका नाम है प्यार इम्पॉसिबल, का एक स्टाइलिश और एनर्जेटिक गाना आलिशा के साथ। इस फिल्म में नजर आए थे प्रियंका चोपड़ा और उदय चोपड़ा। फिल्म की कहानी एक इंटेलिजेंट लेकिन एक बहुत ही शर्मीले लड़की की है, जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की आलिशा से छुप छुप के प्यार करता है। सालों बाद जब दोनों मिलते हैं, तब एक इमोशनल और स्वीट लव स्टोरी शुरू होती है। फिल्म का थीम ये बताता है कि असली प्यार सिर्फ लुक्स या पॉपुलैरिटी ही नहीं, बल्कि ऑनेस्टी और दिल की सच्चाई से बनता है। और कुछ आपको इस फिल्म के बारे में बताते हुए, ये आपको मैं बता दूं कि फिल्म की शूटिंग हुई थी सिंगापुर में, और उस वक्त इसका मॉडर्न स्टाइल और म्यूजिक काफी चर्चा में रहा। प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में एक ग्लैमरस लेकिन इमोशनल कैरेक्टर निभाया है। उस दौरान बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी वो, और नए तरह के रोल्स एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट की। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म अच्छी नहीं चली, लेकिन प्रियंका चोपड़ा का परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद उन्होंने किया फैशन, मैरीकॉम, बर्फी और कई बड़े प्रोजेक्ट्स। धीरे धीरे उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए प्यार इम्पॉसिबल फिल्म का ये गीत, सुपर स्टाइलिश सॉन्ग आलिशा।

दोस्तों ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी और इसे प्रोड्यूस किया था यशराज फिल्म्स ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था जुगल हंसराज ने, जो खुद एक एक्टर भी रह चुके हैं, और उन्होंने इस मूवी को एक मॉडर्न फैरी टेल जैसा बनाने की कोशिश की थी, जहां एक ऑर्डिनरी लड़का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के से

दोस्तों, ये फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है अभय, जिसे उदय चोपड़ा ने निभाया था। अभय बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो उसे कहते हैं नर्ड, गीक, स्पेशली सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में, लेकिन सोशली ऑकवर्ड और बहुत ही शर्मीला होता है। दूसरी तरफ है अलीशा, जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा ने प्ले किया था। वो एक कॉन्फिडेंट, फैशनेबल और सबकी फेवरेट, काफी पॉपुलर कॉलेज गर्ल होती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बहुत सालों बाद दोनों की मुलाकात होती है। आलिशा एक सिंगल मदर बन चुकी होती है और अभय उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर बनकर उसके घर पर आता है। धीरे धीरे आलिशा को अभय की सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी समझ आती है। फिल्म का ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी लगते हैं, बहुत ही सिंपल लगते हैं, वही दिल के सबसे अच्छे होते हैं। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसका म्यूजिक और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, सॉन्ग्स जैसे कि अभी आपने सुना आलिशा और प्यार इम्पॉसिबल का ये टाइटल ट्रैक, उस वक्त यूथ प्लेलिस्ट में काफी सुनने को मिलता था। सिंगापुर की बहुत ही सुंदर लोकेशंस हैं और

ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी ने फिल्म को एक इंटरनेशनल टच दिया है। और आइए अभी सुनते हैं इस फिल्म का अगला ट्रैक जिसका नाम है 10 on 10।

दोस्तों अब चलते हैं प्रियंका चोपड़ा की एक और यूनिक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म का जिसका नाम है व्हाट्स योर राशि। ये फिल्म बॉलीवुड की इन रेयर मूवीज में से एक है जहां एक ही एक्ट्रेस ने एक नहीं बल्कि पूरे 12 यानी 12 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए थे। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में जोड़ैक साइंस यानी राशियों पर बेस्ड 12 अलग अलग लड़कियों का रोल निभाया। हर कैरेक्टर को अपना अलग स्टाइल, नेचर और पर्सनैलिटी दी। किसी में कॉन्फिडेंस था, किसी में सिंप्लिसिटी, तो किसी में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थी। फिल्म के ऑपोजिट नजर आए थे हरमन बावेजा, और कहानी एक जवान युवा योगेश की है जिसे शादी के लिए 12 अलग अलग लड़कियों से मिलना पड़ता है और हर लड़की एक अलग राशि को रिप्रेजेंट करती थी। स्टोरी में कॉमेडी है, कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा रोमांस का तड़का है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फेमस फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर ने, जो लगान और स्वदेश जैसे फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस मूवी में एस्ट्रोलॉजी और रिलेशनशिप्स को और एक फन और म्यूजिकल स्टाइल में पेश दिखाने की कोशिश की। तो सच कहे तो फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट थी प्रियंका चोपड़ा का परफॉर्मेंस। तो आइए इस फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनते हैं जिसका नाम है व्हाट्स योर राशि।

0: कुछ याद आया?
1: ट्यून बढ़िया है लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ।
0: ये हमारा फेवरेट गाना था, आप इस धुन को गिटार पे बहुत अच्छा बजाते थे।
1: पिछले जन्म में भी गिटार?

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज या आकाशवाणी ईटानगर का रौनक फम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के

0: वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and has said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal engaged with over 50 business and industry leaders at the round table hosted by the Consulate General of India in New York in collaboration with the US-India Strategic Partnership Forum. In a social media post, Mr. Goyal said during the round table he highlighted India's strong growth story, reform-driven business environment and expanding opportunities for global investors under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He further discussed ways to deepen India-US trade, investment, innovation and supply chain partnerships for shared prosperity. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister Chaudhary Charan Singh on his death anniversary today. In a social media post, the Vice President said the former Prime Minister was a visionary leader and a tireless advocate for farmers who dedicated his life to the welfare of the agrarian community and the upliftment of rural India. The Lok Sabha Speaker underlined that the entire life of the former Prime Minister was dedicated to the upliftment of the country's farmers, labourers and villages. Mr. Shah also noted that Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh played a pivotal role in strengthening democratic values from the freedom struggle to the emergency period. The normal rail traffic to and from Jammu will be fully restored from May the 31st after more than 9 months with the completion of restoration work on Railway Bridge No. 17 located between Kathua and Madhupur rail section, which was severely damaged last year due to flash floods. Our correspondent reports that Jammu Railway Division has also decided to add additional coaches to the Jammu Tawi New Delhi Rajdhani Express and Sri Mata Vaishno Devi Katra New Delhi Express in view of the extra rush of passengers and rising waiting list during the summer holidays. Benchmark domestic equity indices were displaying a mixed trend in the forenoon session today. The Sensex rose 36 points to 75,904, while the Nifty 50 dipped 25 points to 23,882 when reports last came in. On the sectoral front, IT PAC, Realty and Media were leading the gains, while weakness was observed across oil and gas, metal and energy stocks. The Indian Meteorological Department, IMD, has predicted below normal rainfall over the country during the southwest monsoon season between June and September. Briefing the media on the second stage long-range forecast for monsoon season 2026 in New Delhi today, Secretary of the Ministry of Earth Sciences, Dr. M. Ravichandran, said the southwest monsoon seasonal rainfall over the country is likely to be 90% of the long period on average, with a model error of plus minus 4%. He informed that during the season, rainfall is most likely to be normal over northeast India and below normal over central southern peninsula and northwest India. And with that, we end this news bulletin.
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए, आपको ले जाती हूँ अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है गजल।
4: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
5: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों, हर लफ्ज में थोड़ी बारिश हो, हर सुर में थोड़ा चांद उतर आए और हर दिल को एक पुरानी याद का रास्ता मिल जाए। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल, एक ऐसा महफिल जहां आप अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ये सेगमेंट उन तमाम ओल्ड सोल्स के नाम है जो रात की खामोशी में चाय की हल्की सी भाप के साथ गजलों का सफर तय करते हैं, जो आज की फास्ट दुनिया में भी धीमी आवाजों की खूबसूरती को ढूंढ लेते हैं। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी गजलें जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाती है। और महफिल की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ। तलत अजीज की आवाज में पेश है जिंदगी जब भी। तलत अजीज की गायक में एक अजीब सी नरमी है, जैसे पुरानी किताब के बीच संभल कर रखा हुआ कोई गुलाब। उनकी गजलों में दर्द भी होता है और सुकून भी। जिंदगी ने हर मोड़ पे आवाज तो दी थी, हम भी थे जो हर बार किसी याद में ठहरे रहे। तो दोस्तों, महसूस कीजिए लफ्जों का जादू, सुनिए जब भी तलत अजीज की आवाज में फिल्म उमराव जान से।

दोस्तों, अब महफिल को आगे बढ़ाते हैं गजल की दुनिया के एक ऐसे बादशाह के साथ जिनकी आवाज में तन्हाई भी है और तसल्ली भी। जगजीत सिंह जी। हाँ दोस्तों, अगली गजल का नाम है कल चौदहवीं की रात थी। वो क्या खूबसूरत एहसास है कि इस टाइटल में ही चांदनी, इश्क और हल्का सा इंतजार। जगजीत साहब ने इसे बस गाया नहीं, जी लिया था। इस गीत की बोल है, इस गजल की बोल है, चांद भी उस रात थोड़ा धीरे धीरे निकला होगा, किसी ने किसी का नाम आंखों से लिखा होगा। तो चलिए रात को और हसीन बनाते हैं, सुनते हैं ये कल चौदहवीं की रात थी।

दोस्तों, अब अगली महफिल पेश है, कोई ये बताए। कभी कभी इंसान सवालों से भर जाता है दिल, दिल समझना चाहता है कि मोहब्बत को, वक्त को, जुदाई को, और तब गजल हमारे लिए जवाब बन जाती है।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल या आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको ले जाते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम आपके लिए पेश होगा गीत माला, जो है फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से।

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। आज का ये खास सेगमेंट उन वीर जवानों के नाम है जो सरहदों पर हर मौसम, हर मुश्किल और हर अंधेरी रात में देश की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब कहीं बर्फीली पहाड़ियों पर, कहीं तेज हवाओं और सुनसान बॉर्डर पोस्ट पर हमारे सोल्जर्स अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उनकी हिम्मत सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हौसला है। जो खुद धूप में जलते हैं, वही दूसरों के घरों में रोशनी बचाए रखते हैं। आज के गीत माला कार्यक्रम उन्हीं फौजी भाइयों के को एक छोटा सा सलाम है, चाहे वो राजस्थान के रेगिस्तान हो, अरुणाचल के पहाड़ियां हो, लद्दाख की सर्दी हवाएं या समुद्री सीमाएं। हर जगह हमारे जवान पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। और दोस्तों, देशभक्ति की बात हो तो एक टाइमलेस गीत का जिक्र ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। अब जो गाना हम लेकर आए हैं, उसने न जाने कितने दिलों में मिट्टी की खुशबू जगाई है। महेंद्र कपूर की बुलंद और जज्बात आवाज में ये गीत आज भी हिंदुस्तान को गर्व से भर देता है। फिल्म उपकार का ये अमर गीत सिर्फ एक गीत ही नहीं, देश के प्रति प्यार का एहसास है। तो चलिए दोस्तों, अपने दिल को तिरंगे के रंग में रंग लीजिए और हमारे वीर जवानों को दिल से सलाम करते हुए मेरे देश की धरती।

दोस्तों, सरहद पार खड़े हमारे जवान सिर्फ देश की सीमा नहीं संभालते, वो हमारे सपने, हमारी आज़ादी और हमारी मुस्कान का भी हिफाजत करते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग पूरे वतन के लिए जीते हैं। जब हम तिरंगे को लहराते हैं तो उसके पीछे हजारों सोल्जर्स की मेहनत और बलिदान छुपा होता है। उनकी ड्यूटी का कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता, कभी तेज बारिश, कभी बर्फीली हवाएं, तो कभी लंबी तन्हा रात, फिर भी उनके हौसले कभी कम नहीं पड़ते। और हमारा एक छोटा सा मैसेज है उन जवानों के लिए जो इस वक्त रेडियो सुन रहे होंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपकी हिम्मत ही हमारी ताकत है। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये रोज की जिम्मेदारी है। कभी कभी किसी सोल्जर की कहानी सुनिए, कभी उनके परिवार के सैक्रिफाइस को समझिए, तभी महसूस होता है कि यूनिफॉर्म के पीछे एक दिल भी धड़कता है। सीमा पर खामोश खड़े लोग हैं, देश के सबसे बुलंद गीत होते हैं। और इसी जज्बात के साथ गीतमाला का सफर आगे बढ़ते हैं, जहां हम हर गीत में देश की मिट्टी की खुशबू और हिंदुस्तान का दिल को समझते हैं।

0: श्रोता, अभी आप कुछ ही पलों में सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये था कार्यक्रम गीत माला, आकाशवाणी ईटानगर, अरुण एफएम 103.1।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s, एक ऐसा म्यूजिकल सफर जो हमें ले चलता है हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहां हर धुन में मेलोडी थी, हर लफ्ज में एहसास था और हर एक एहसास में एक कोई अलग ही जादू। आज का ये गीत, ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है उन तमाम ओल्ड सॉन्ग लवर्स के नाम जो दिल से ओल्ड सोल्स होते हैं, उन दिलों के लिए जो आज भी पुराने फिल्मी गीतों पे अपनी यादें, अपनी कहानियां और अपना सुकून ढूंढ लेते हैं। पुराने गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो वक्त के संभाले हुए टुकड़े होते हैं। 1960s का दौर हिंदी फिल्म म्यूजिक का गोल्डन एरा माना जाता था। उस वक्त के कंपोजर्स, गीत के बोल और सिंगर्स ने एक ऐसा गीत दिया जो आज भी हर जनरेशन को दिल छू लेता है। ना ज्यादा जोर होता है, ना आर्टिफिशियल बीट्स होता है, और सिर्फ सुर हो, अल्फाज और दिल की सच्चाई। इसी खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं अगला गीत, जिसे आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। मेहमानों को सलाम। और इस म्यूजिक को कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s या आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए, पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जो है हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई, तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें, ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें, ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: सुपीरियर हैंडलिंग, स्टाइलिश लुक, एक्सप्लोर।
0: नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे म्यूजिकल सेगमेंट हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में, जहां हम हर गाना लेकर आते हैं इमोशंस का नया रंग। कभी इश्क, कभी यादें, तो कभी वो दिल की बातें जो लफ्जों में कहना मुश्किल होता है। और आज की इस खूबसूरत शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जिसने बहुत कम वक्त में लिसनर्स के दिलों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म एनिमल का ये सोलफुल ट्रैक, जिसका नाम है पहले भी मैं, विशाल मिश्रा की आवाज में ये गाना एक इमोशनल कन्फेशन की तरह लगता है। इसके गीत की बोल और मेलोडी दोनों में गहरी उदासी और मोहब्बत की खामोशी है। फिल्म एनिमल का इस गाना बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया था और ऑडियंस ने इसकी इमोशनल वाइब को काफी पसंद किया है। तो आइए लीजिए, पेश है गीत पहले भी मैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और ऑनेस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स और हमारी लाइफ में एक चीज तो कॉमन होती है, दोनों का मूड कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं। कभी हम पहले भी मैच ऐसे इमोशनल गाने सुन रहे थे, तो अब बारी है ये मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से धुन की, जो कि एक कॉन्सर्ट वाइब जैसा आपको देगा। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये गीत मेरे ब्रदर की दुल्हन से नेहा भासिन की आवाज में। इस गीत पर फीचर कर रही हैं कैटरीना कैफ।

बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपीसीटी आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश जारी किया है।

दोस्तों, क्या कमाल का गाना था, 10 बहाने करके ले गई दिल। वैसे सच कहूँ तो बॉलीवुड ने हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह सिखा दी है कि दिल संभाल कर रखो, क्योंकि यहाँ लोग एक बहाना नहीं पूरे 10 बहाने लेकर आ जाते हैं। किसी ने आंखों से दिल चुराया, किसी ने बातों से, और कुछ लोग तो बस हाय बोलकर ही इमोशनल डैमेज दे देते हैं। और ये जो फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं ना दोस्तों, इनका भी अपना टैलेंट होता है। आप चाहे कितना भी सीरियस मूड में हो, एक कैची बीट आए नहीं कि अंदर का हिडन डांसर तुरंत ऑनलाइन आ जाता है। तो मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी फिल्मी हो तो सफर और भी एंटरटेनिंग लगता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें

प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है।
दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जो है हिट्स ऑफ द 90s।
4: अरुणाचल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज

0: का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे म्यूजिकल सेगमेंट हिट्स ऑफ द 90s में। ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उन तमाम म्यूजिक लवर्स के नाम जिनके दिल में आज भी 90s के गाने एक स्पेशल जगह रखते हैं, और वो दौर जब कैसेट्स रिवाइंड होते थे, रेडियो पर फेवरेट गाना आते ही वॉल्यूम पर जाता था और हर मेलोडी सीधा दिल तक पहुंचती थी। 90s के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, वो स्कूल की यादें, पहला प्यार और बारिश वाली शामें थी। उस वक्त के गीत में कुछ अलग ही सॉफ्टनेस, कुमार सानू की रोमांटिक आवाज, उदित नारायण की फ्रेशनेस, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की मधुर मेलोडीज, हर गाना जैसे एक छोटी सी लव स्टोरी जैसे होता था। सच कहें दोस्तों, 90s के लोगों का कार्डियो क्या था? कैसेट की रिबन पेंसिल से वापस घुमा घुमा के वही था उनका कार्डियो। तो अगर आप उन्हीं ओल्ड स्कूल दिलों में से एक हैं जो आज भी 90s का गाना सुनकर खिड़की के बाहर हीरो वाली फीलिंग लेने लगते हैं, तो ये सफर है खास आपके लिए।

दोस्तों हिट्स ऑफ द 90s में अब थोड़ा मूड इमोशनल होने वाला है क्योंकि अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा गाना जिसमें मोहब्बत है, जुदाई है और 90s वाली वो पूरी फिल्मी इंटेंसिटी है। फिल्म कोयला का ये सुपरहिट ट्रैक है जिसका नाम है तन्हाई। तन्हाई उस दौर का मोस्ट लव्ड रोमांटिक सॉन्ग में से एक माना जाता है। इस गाने को आवाज दी थी वो उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इसका सोलफुल म्यूजिक कंपोज किया था राजेश रोशन ने और गीत की बोल लिखे थे इंद्रवर ने। फिल्म कोयले में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री ने इस गाने को और भी यादगार बना दिया था। बर्फीले लोकेशंस थे, इमोशनल एक्सप्रेशंस था और 90s की ग्रैंड पिक्चराइजेशन थी। और ये मूवी का ये गीत है तन्हाई, इसे शूट किया गया था तवांग के माधुरी लेक पर। तो आइए दोस्तों इसी के साथ माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान का फीचर्ड ये सॉन्ग सुनते हैं सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz।

0: trong aking nam nali na khok studio mai chư cần và cha pha poi này không thể không thì tự khai mấy xuất yêu họ xá thủ
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से न्यूज हेडलाइंस अंग्रेजी में मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और ताई खामची श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको ले जाते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है बॉलीवुड अपडेट्स।
2: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड अपडेट्स और हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में, जहां मिलते हैं आपको बॉलीवुड के लेटेस्ट खबरें, थिएटर्स रिलीजेस, ओटीटी अपडेट्स और थोड़ी सी फिल्म की गॉसिप का मसालेदार तड़का। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आरजे लूसी और अगले 10 मिनट हम घुसने वाले हैं सीधा बॉलीवुड के बैक स्टेज एरिया में। तो अपनी चाय रेडी रखें क्योंकि गॉसिप बिना चाय के अधूरी लगती है। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स में रिलीज होने वाली फिल्मों की। इस वक्त बॉलीवुड में काफी इंटरेस्टिंग फिल्म्स की चर्चा हो रही है। है जवानी तो इश्क होना है का काफी बज़ है। फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े। ये फुल ऑन रोमांटिक एंटरटेनर बताई जा रही है और इसका टाइटल सुनते ही 90s वाली फिल्मी वाइब आ जाती है। फिल्म को रिसेंटली यूए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और फैंस इसका ईगरली वेट कर रहे हैं। और दोस्तों एक फिल्म जो काफी हेडलाइंस में है वो है चांद मेरा दिल। इस फिल्म में फ्रेश पैरिंग हमें देखने को मिलेंगी अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की। रोमांटिक ड्रामा लवर्स के लिए तो ये फिल्म काफी एक्साइटिंग मानी जा रही है और हिस्टोरिकल सिनेमा लवर्स के लिए आ रही है राजा शिवाजी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं खुद रितेश देशमुख। फिल्म छत्रपाठी शिवाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है और इसका स्केल काफी ग्रैंड बताया जा रहा है। बॉलीवुड का रूल सिंपल है दोस्तों, ट्रेलर हिट तो पब्लिक लिट। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा ये गीत जो कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स और हिंदी फिल्म सॉन्ग में पेश है। नमस्ते लंदन से दिलरुबा।

0: group discussion tu so angot asole kauma ajang ba ya tu so ma haja polygamy ko ma mine shuko tham pai apong asau tai kya social psychological hiya cultural singen toi tai pho mo hitle yo vanaze le upper siang district unit APWWS ho tham angkya members tham yo ha kai le bakle ka ho ivei
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं वांचो भाषा में समाचार वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों अब वक्त है हमारे अगले म्यूजिकल सेगमेंट का, कार्यक्रम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। और ये सेगमेंट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन तमाम श्रोताओं के नाम जो इस पूरे ट्रांसमिशन के दौरान मेरे साथ जुड़े रहे। आपकी कंपनी और आपका प्यार इस सफर को इतना खास बनाता है। रेडियो की दुनिया में सिर्फ आवाज सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो रिश्ता भी बन जाता है। चाहे आप अगर घर पर हो या ड्यूटी पर हो, ड्राइविंग कर रहे हो या रात की या शाम की खामोशी में आप बस रेडियो सुन रहे हो, तो दिल से शुक्रिया मेरे साथ वक्त बिताने के लिए। और दोस्तों म्यूजिक भी कितना अजीब चीज है, कभी एक गाना पुरानी याद दिला देता है और कभी बिना वजह से चेहरे पे स्माइल ले आता है। तो ये अगला सफर उन्हीं दोस्तों के लिए है जो कहते हैं गाने बदलते रहते हैं पर रेडियो से प्यार कभी नहीं बदलता। चलिए इस म्यूजिकल सफर को और हसीन बनाते हैं हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।

0: handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
3: श्रोताओं। अब हम ले चलते हैं आपको उस एनर्जेटिक और यूथफुल फिल्म की तरफ जहां एक्शन है रोमांस के साथ। वो है हीरोबंदी 2014 में रिलीज हुई फिल्म।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे ईदू मिश्मी भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वंशो श्रोताओ का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे ईदू मिश्मी श्रोताओ का कार्यक्रम।
3: एचा आकाशवाणी ईटानगर चोला पुचे जानहर खिनि मेटु बेलिनी एतानिचे इदुमिस्मी आहोला केजे तरगालंबो एतानि अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस APSTS खागेबा मांगहनुबा इनि एनापगाजिदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट में लाहुगाने अरुणाचल प्रदेश माचि आतिको समामा खीगा स्टेट ट्रांसपोर्ट में मांगहनुलिबा आतिकाचि इमुदोने इकिसा डेवलपमेंट जता आरोबदा लगादा आहोगा ओना तिराप डिस्ट्रिक्ट खोंसा तिकोचे नेहरू स्टेडियम माने आ इनि एनागा दो माने अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग मैम गोल्डन जुबली मैराथन टूमगा असला एकेगेने आहेबदा आहोगा यूनियन MSME लेबर दोने एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर सोबा करण लाजे मैम बुनी इसियांग डिस्ट्रिक्ट मा गिबाने डेवलपमेंट जाओमें दो अथुसुगेबदा आहोगा यूनियन मिनिस्टर में डेवलपमेंट जो मची पिचा मीटिंग मा दिसी ताइतागु एडमिनिस्ट्रेटिव आजा लम्ब्रो डिपार्टमेंट आजा हेता लम्ब दोने MSME ने लेबर दोने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मा ची आजा बाबो लम्ब्रो गिगा बदा ला होगा आलम्ब्रो ची ये चु प्रबना होगे बने आजमा लम्ब्रो अहिया टीचर लम्ब्रो बु आसाला मुंजी खिमु अरुंदाइदा नेम अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर PD सोना में बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट खोंसा तिगोचे बॉबी अपर प्राइमरी स्कूल अजितला मंगलहुनुबा इनी एनागा माचिचा बमहो लाइबदा आहोगा

0: तिराप डिस्ट्रिक्ट मा चे जोना आचु प्रभा एवमा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में तांदो अरगा चाहे प्रांपाबुदा ने मिनिस्टर में नरगा ने वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन में मेमोरेंडम आजो माने आसिला चामा आ स्कूल मा चे आहिमो इकुनी ओ आज तेगा नाव के बने हानुची आमेनु माने कानी करो पाउ हावे ला होया के बता आ होगा आ इन्हें है कुंसाती बच्चे वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में आखने का दा आ होगा बुनी ने अन्य निगे बने कई पंजार डिस्ट्रिक्ट माची याजाले थी कोने बीच उत्सव ऐसा क्या अन्य होता हो अखबार बा अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर गब्रियल डी वांगसु में आय पहाय बता आ होगा बुंतले है अतिकच्छ मोरा बुबु जो काची के मा क्या पगता ने मिनिस्टर में लगने लवर सुपरसी डिस्ट्रिक्ट जीरो अतिकच्छ हागे नानिया में आ डिस्ट्रिक्ट माची के ब्राता ता हुलुन्य है मी किशा में उन्हें सीधा लाही हुए बुहा बचा है प्रांडा एजुबुदा नरगादा आहोगा अरुणाचल प्रदेश माची आप इतिहास के बने एग्रो बायोलॉजी फेस्टिवल दोने एग्जीबिशन एक का मने अरुणाचल प्रदेश माची आप इतिहास में बुगने अखगाजी हाथुमु आप यंदो एक का दा आहोगा आप फेस्टिवल मा कई पंजोर ने लवर सुबंसी डिस्ट्रिक्ट माची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट स्पाइस बोर्ड दोने नारा अबा मच इमु में गिगा बता ला होगा बुनी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो मा इगामो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू मच चेयरपर्सन विजया राहत कार दोने इकिशा मेमोरा नंबर में यशोदा एआई इनिशिएटिव मा अतोपा अतिकोची इमो नंबर को चिचा वहां बता आओगा आमहो यह है अरुणाचल प्रदेश मच कारु है तदा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में लातेगा बता आओगा काजीवाने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सोम अजीते हुए लगाजी लाके हुए ताला ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में बुनी इस सियांग डिस्ट्रिक्ट रिगा सर्कल मचे पंकांग अतिको ने अन्य निगा ने अतिकाची मुला जो है मीटिंग अखा प्रोग्राम बदा आहोगा महो आला जो है प्रोग्राम मा अतिकोची इमु तांद में याते गने अरुआ बदा ला होगा या कान्यसो ब्रिगा मने या कोन मची आहोसो काजी एम्बेगा थोपुमा ला तचिले ने अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यिंगकोंग अतिगाचे अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी हारो में बुनी एरंगा गने चिचाओ प्रोग्राम के अखने का लता ला होगा ने आ प्रोग्राम में ने या को नंबर ची उगा मी थोपु उखो ची पुआ चिचाओ लता ला होगा ऐतनी ची इधु मिसमी आहो लिमाओ दबाए
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर दिवगढ़ नाले इद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खियामा हो एतनि हेंदो ओतो के म्यूलिची आशे ची अहोजी

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे ईदुमिश में भाषा में समाचार। ईदुमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, अब वक्त है आपको फिर से ले जाने का हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है हिंदी फिल्मी गीत, और सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म लक बाय चांस से भावरे।

दोस्तों, ये सेगमेंट बिल्कुल खास है क्योंकि ये सेगमेंट हमारा हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स डेडिकेटेड है आप सभी श्रोताओं के नाम जो इस पूरे ट्रांसमिशन के दौरान मेरे साथ जुड़े रहे। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लूसी, खासकर उन सभी दोस्तों के लिए जो अभी अपनी ऑफिस ड्यूटी से घर की तरफ सफर कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में रेडियो सुनते हुए ट्रैफिक के बीच के थोड़ी सी सुकून की धुन ढूंढ रहे हैं, और उन मेहनत कक्ष किसान भाइयों के लिए जो दिन भर अपने खेतों में काम करके शाम को थोड़ी सी थकान के साथ लेकिन दिल में एक मुस्कान लेकर रेडियो सुन रहे हैं, आप सभी का प्यार ही हमेशा इस सफर को इतना खास बना देता है। रेडियो सिर्फ एक आवाज नहीं होता, कभी कभी वो सफर का साथी और थकान का इलाज होता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चाहे आप हाईवे पर हो या गांव की सड़क पर, ड्राइव केयरफुली, अपना ध्यान रखिए और अपना सफर को सेफ बनाइए। अब चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सफर को म्यूजिक के साथ आगे बढ़ाते हैं हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के एक दिलचस्प सिलेक्शन के साथ, और अभी आप सुन पाएंगे दबंग 2 से फेयर वी कॉल से गीत।

दोस्तों, जिंदगी अगर कभी बोरिंग लगे तो वॉल्यूम बढ़ा दो। हाफ प्रॉब्लम्स तो बीट ड्रॉप के साथ ही भाग जाती है। तो चाहे आप किचन में हो या ऑफिस में हो या हॉस्टल रूम में हो या अगर आप अपने ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं, तो ये गाना स्पेशली आप सबके लिए है। स्माइल कीजिए, शोल्डर्स को थोड़ा मूव कीजिए और लेजी मत बनिए।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी, और हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गैर अतत तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी तीसरी प्रसारण सभा के लिए आरजे मंजू स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, आप सबको नमस्कार।

0: दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे तांगसा भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मजूसा डुबार रमंगा मे जिलिंग रामकट का उतारी पां हजनेरा खोकरो पां आरो रंगजा बले बे खुमिनि थोर जामसो तांगसा प्रोग्राम तफंगराय मजोरंगजा रुंगरंग रुकवांग कोनका ममाइर अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस वनर मजोसा पन गोल्डन जुबली सकान सेरें कुरखाम अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन र सोशल मीडिया पोस्ट नंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस APSTS वनम रन बदहुत अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस वनर स्टेट वंग हालु लमचा हाताम प तर्थान रौरे महेंग प अरको नंग लमन रौ स्टेट प उन्नति तयंग होहाय कुरु मुरौ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रफांत अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस वनर गोल्डन जुबली सरेंग कुरु थलिंग अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग मचौसा खुनसा नंग नेहरू स्टेडियम नंग गोल्डन जुबली मैराथन रेस प तफांत आशुम सुरकई वंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइक्रो नई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस नई

नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारे आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की तीसरी प्रसारण सभा। और हाँ, थैंक यू सो मच लूसी जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। चलो श्रोता, ये भी बता दो आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण, और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो।

0: दोस्तों, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसीलिए इससे सीखो और आगे बढ़ो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी भी अगर आप असफल हो जाते हैं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करें यही गलती दोबारा ना दोहराए। श्रोता, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए, मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर। नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में स्वागत करती हूँ आप सभी का। ज्ञान एवं मनोरंजन पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, बहुत बारिश के बाद अचानक जब तेजी से धूप आ जाती है तो ऐसे में किस तरह की बीमारियां ये साथ लाती है और किस तरह से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ मजेदार गीत जरूर लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। बारिश के बाद अचानक तेज धूप के कारण होने वाली आम बीमारियां और उससे बचने के लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आज आपको इस कार्यक्रम के दौरान कि आप अपने आप को सतर्क रख पाएंगे और सावधान रख पाएंगे। दोस्तों, अचानक जब धूप बहुत तेज हो जाती है बारिश के बाद तो वातावरण में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों बढ़ जाती है। इस मौसम में मौसम परिवर्तन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है जिससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि समय रहते हम सावधानी बरते तो इन बीमारियों से आसानी से बचा भी जा सकता है। सबसे पहले तो सर्दी जुकाम और वायरल बुखार जो है बिल्कुल आम सी बात है। बारिश में भीगने और तेज धूप या गर्मी लगने से शरीर का तापमान अचानक बदलता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी जो है कमजोर हो जाती है और सर्दी खांसी, गले में दर्द या वायरल बुखार हो जाता है। नाक बहना, गले की खराश और फिर बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान, ये सभी आम बात है। ऐसे में करना क्या है दोस्तों कि आप तुलसी या अदरक और या फिर काली मिर्च की चाय पिया कीजिए। बीच बीच में शहद और अदरक का रस भी लें, गुनगुना पानी पिए और ठंडी चीजों से जरूर अपने आप को बचाए रखें। ये नहीं कि आप बहुत गर्मी से घर पहुंचे हैं, शरीर गर्म से तप रहा है, पसीना बह रहा है तो आप फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पिए, ये बिल्कुल गलत आदत है। भाप लेने से बंद नाक और गले को राहत मिलती है, बंद नाक खुल जाते हैं। डिहाइड्रेशन, जी हाँ दोस्तों, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है बारिश के बाद तेज धूप और उमस के कारण। दोस्तों, शरीर में पसीना अधिक निकलने लगता है जिससे पानी की कमी हो जाती है, शरीर में डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। तो जब डिहाइड्रेशन होता है दोस्तों, होता क्या है, चक्कर आने लगते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, कमजोरी महसूस होती है, गला सूखने लगता है। तो ऐसे में आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिया कीजिए, हो सके तो नींबू पानी, नारियल पानी या ORS या छाछ का सेवन जरूर करें। तरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी वाले फल जरूर खाएं जब बहुत ज्यादा तेजी से धूप आती है, धूप निकलती है। तो अचानक तेज धूप और नमी के कारण त्वचा पर घमौरियां, खुजली और सनबर्न जैसी समस्याएं तो बिल्कुल आम सी बात है। ऐसे में त्वचा में रैशेस आ जाते हैं, खुजली और जलन, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं शरीर में। ऐसे में क्या करें दोस्तों, एलोवेरा जेल का उपयोग करें, चंदन या ठंडे पानी का उपयोग करें नहाने के लिए, सूती और हल्के कपड़े पहना कीजिए, अधिक पसीने होने पर शरीर को साफ रखें। और भी बहुत सारी बातें करेंगे इसी तरह के इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है अनजाना अनजानी फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

0: तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि आप सुन रहे हैं इस गीत को फिल्म बातों बातों में से। और दोस्तों, जब अचानक बारिश के बाद तेज धूप निकलती है तो ऐसे में पेट की समस्या भी होने लगती है। बदलते मौसम पर दूषित पानी और भोजन से पेट खराब, दस्त, गैस और अपच जैसी समस्याएं तो होती ही है अगर आपने लापरवाही बरती तो। और ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, हल्का और ताजा भोजन करें, उबला या साफ पानी ही हमेशा पीजिए, दही, जीरा या सादा खिचड़ी का सेवन करें, अधिक तला भुना खाने से बचे। और फिर तेज धूप होने से दोस्तों, शरीर में थकान तो होती ही है, साथ ही साथ सिर दर्द की समस्या भी होती है। आराम करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, ठंडा पानी या नींबू पानी पिया कीजिए। और श्रोता, इसी के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे नौक्ते डायलेक्ट न्यूज। और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नौक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरलाजे ने आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में चल रहे विकासात्मक गतिविधियों और जनसेवा वितरण का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक और विभिन्न स्थलों का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के खोंसा स्थित बोपी पपर प्राइमरी स्कूल के 50 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। मौसम विभाग का जून से सितम्बर के बीच पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को

0: अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार।
1: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदरलाजे ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में चल रही विकासात्मक गतिविधियों और जनसेवा वितरण का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक और विभिन्न स्थलों का दौरा किया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिले में विकास कार्यों को मजबूती देने और जनसेवा वितरण को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सुझाव दिए। बैठक में सियांग जिले के उपायुक्त आयता को, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न कार्यालयों के प्रमुख तथा एमएसएमई और श्रम विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से APSTS को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 50 गौरवशाली वर्षों में APSTS अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रहा है। ये दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने, समुदायों को करीब लाने और राज्य की विकास एवं प्रगति की यात्रा को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि हर सड़क और हर मील के सफर में इसकी सेवाओं ने लोगों के प्रति समर्पण, दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाया है। समारोह के तहत परिवहन मंत्री ओजिंता सिंह ने आज खोंसा के नेहरू स्टेडियम में स्वर्ण जयंती मैराथन को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के खोंसा स्थित बोपीप अपर प्राइमरी स्कूल के 50 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे की वास्तविक क्षमता केवल समर्पित और ईमानदारी शिक्षकों के माध्यम से ही नहीं विकसित की जा सकती है। उन्होंने स्कूल को स्वर्ण जयंती की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर बधाई देते हुए कहा कि तिराप जिले की शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत में महिला कल्याण संघ के महत्वपूर्ण योगदान रही है। संस्था को निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने मिशन के निरंतर बने रहने का आग्रह भी किया है। महिला कल्याण संघ की अध्यक्षा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के जवाब में श्री सोना ने अगले वर्ष में 2 कक्षाओं के निर्माण के लिए 2 करोड़ रूपये प्रदान करने की घोषणा भी की। इस समारोह का आयोजन महिला कल्याण संघ खोंसा के तत्वाधान में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज के दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि छात्रों के विशेष और विश्वास को ठोस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंता के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना ने परिवारों को बिजली के खर्चों में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद की है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों में स्वस्थ बैलेंस शीट और साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इस भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में भी उभरे हैं। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून में मौसम में देशभर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
3: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली साइकिकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा है कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
4: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पुरुष के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काकामीगहारा में कजाकिस्तान को 13-0 से शानदार जीत से पराजित किया है। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर हॉर्मुज जलडमरु मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। यह जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के माध्यम से मिली है। टैंकर निसोर केरोस हॉर्मुज जलडमरु मार्ग को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The apex court noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly. Addressing students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledged that their trust has been breached. The Delhi government will provide free travel in all Delhi Transport Corporation buses to the appearing candidates for NEET UG 2026 examination, which is scheduled on the 21st of next month. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that candidates can travel free in the DTC buses upon presentation of a valid admit card. She added that no student should face inconvenience on a day that holds such importance for their future. India has marked a historic milestone in its clean energy journey. Union New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said that 40 lakh households have now been empowered with rooftop solar under PM Surya Ghar scheme. He added that more than a renewable energy initiative, this transformative scheme is turning citizens from power consumers to power producers. The scheme is also enabling families to reduce electricity expenses, benefit from government subsidies and move towards zero electricity bills. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today inaugurated India's first integrated next-generation aviation weather and fog monitoring system, Skycast, at Indira Gandhi International Airport in New Delhi under the flagship mission MOSAM. Addressing a press conference, Dr. Singh said that the new system aims to strengthen airport weather monitoring and fog forecasting. He said Skycast has been developed to support safer, more efficient and weather-resilient air transportation operations, particularly during dense winter fog and rapidly changing weather conditions. The Reserve Bank of India, in its annual report released today, stated that robust macroeconomic fundamentals will support the growth trajectory of the Indian economy in the current fiscal year, despite headwinds from elevated energy prices, supply chain disruptions and global market volatility. According to the report, healthy balance sheets of the corporate and banking sectors, along with the government's continued thrust on capital expenditure, bode well for India's strong growth trajectory. Prime Minister Narendra Modi today asserted that humility, forgiveness and noble conduct are the true ornaments of personality. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that along with these qualities, countrymen are steadfastly engaged today in the fulfillment of the resolve for a developed India. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed the need to adopt bhakti and meditation to attain inner and global peace. Addressing the 45th anniversary celebration of the Art of Living Foundation International Center in Bengaluru today, he said bhakti signifies dedication towards oneself, family, society, the nation and humanity as a whole. He said bhakti inspires people to live in harmony with others and with themselves. Quoting the teachings of Sri Sri Ravi Shankar, he said, "The art of living lies in embracing change and enjoying every moment of life." Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has congratulated the government of Orissa, Intel and 3DGS on signing a memorandum of understanding to bring substrate manufacturing technology to India. Mr. Vaishnaw said this will further advance the semiconductor ecosystem in India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under the UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah pay tributes to former Prime Minister Chaudhry Charan Singh on his death anniversary today. That is all in this news bulletin. Namaskar.

माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे नोक्ते डायरेक्ट न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस बार कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

जी हाँ दोस्तों, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। पहला गीत हमने पेश किया आपके लिए मैंने प्यार किया फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत को दिल तो पागल है फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।

प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

श्रोता कार्य फिल्म संघर्ष के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए क्योंकि आगे लेकर आए हैं हम आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्वेता, दिल फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।
1: ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम

चेयरमैन ऑफ डीडीएमए कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं डीईओसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, हम है राही प्यार के फिल्म केसी गीत के साथ ही बता दो आपको कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए श्रोता, आगे लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर। नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल

अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में हर किसी की अपनी कहानी है और अपना संघर्ष है। किसी को फिल्में पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो किसी को दूसरी वजह से संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही एक एक्टर था जिसे एक्टर है जिसे फिल्में तो आसानी से मिली क्योंकि उनके पिता एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। लेकिन उनकी कुछ नादानियों की वजह से उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। फिर कई सालों बाद वो संभले और आज सफल करियर के साथ इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे आज। जी हाँ, हम बात करेंगे संजय दत्त के बारे में, जो अपने स्टार पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं और उनकी हर इच्छा पूरा किया गया। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बोलने से पहले उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, इसीलिए वो किसी चीज की कद्र नहीं कर पाए। संजय दत्त से जुड़ी इसी तरह की बहुत सारी बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद देते हैं इस गीत का रॉकी फिल्म से।

जी हाँ श्रोता, आप सुन रहे हैं इस गीत को रॉकी फिल्म से। रॉकी जो कि रिलीज हुई 1981 में, अभिनेता संजय दत्त की पहली फिल्म यानी कि डेब्यू मूवी थी यह फिल्म। यह फिल्म 7 मई 1981 को रिलीज हुई और इसके निर्देशन उनके पिता सुनील दत्त ने किया था। इस फिल्म से संजय दत्त ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।

तो दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का रॉकी फिल्म से। नरगिस और सुनील दत्त की पहली संतान संजय दत्त, नरगिस और सुनील दत्त ने संजू उन्हें संजू कहकर पुकारना शुरू कर दिया था प्यार से। बचपन में संजय की कुछ शैतानियों के कारण उनके पिता ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। लौटकर आए तो पिता ने फिल्म रॉकी के लिए उन्हें चुन लिया और फिल्म बनाने लगे। उसी दौरान संजय दत्त की दोस्ती कुछ शायद गलत लोगों से हुई और वो गलत संगत में पड़ गए। संजय दत्त अपनी मां नरगिस के बहुत करीब रहे, लेकिन फिल्म रॉकी के रिलीज से पहले उनकी डेथ हुई, जिससे संजय दत्त अकेले पड़ गए। फिल्म तो सुपरहिट हुई, लेकिन उनकी कुछ गलतियों के कारण उन्हें कुछ फिल्में मिली और सफल भी हुई, लेकिन कुछ फिल्में फ्लॉप भी रही। साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम भी आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त के घर कुछ ऐसे हथियार बरामद हुए जो प्रतिबंधित थे। मामला लंबा खींचा गया और संजय यानी कि संजू को काफी समय जेल में बिताना भी पड़ा। उस दौरान फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए और कुछ समय बाद संजू पूरी तरह इंडस्ट्री ने संजू को बैन कर दिया था। दरअसल उस मामले में संजू पर कोर्ट ने तादा एक्ट लगा दिया था और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बैन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगे रहे और बाद में वो एक्ट हटा, लेकिन फिर भी वो जेल में रहे। संजू जब बाहर आए तो उनके पास काम नहीं था, लेकिन उस समय विधु विनोद चोपड़ा

रिक्स लेकर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस दी और फिल्म रिलीज हुई अखबारों और न्यूज चैनल के कारण लोग संजय दत्त से नफरत सी करने लगे थे, लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस ने संजू की किस्मत बदल दी और लोग मुन्ना भाई के दीवाने हो गए। इसी बात पर चलिए आनंद लेते हैं मुन्ना भाई फिल्म, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के ही इसी गीत का।

नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि किसी कारण से हम लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के गीत आप तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके लिए हमें खेद है। लेकिन बता दूं आपको कि इस वक्त आप सुन रहे हैं इस गीत को खलनायक फिल्म से। जी हां, खलनायक 1993 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया। फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जेकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म 1993 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

श्रुता, इस फिल्म में संजय दत्त ने बलराम प्रसाद उर्फ बल्लू का किरदार निभाया था, जिसे लोग खलनायक कहते थे। बल्लू एक अपराधी होता है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी दिखाई गई है। फिल्म में उसका किरदार, स्टाइल, एक्शन और दमदार डायलॉग्स की वजह से ये बहुत लोकप्रिय रहा।

श्रोता, जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव के बाद संजय दत्त आज अपनी जिंदगी में अपने जीवन में काफी खुश और व्यस्त माने जाते हैं। उन्होंने अपने कठिन समय को पीछे छोड़कर परिवार, स्वास्थ्य और फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वह अपनी पत्नी मान्यता दत्त और बच्चों के साथ समय बिताते हैं और फिल्मों और बिजनेस में सक्रिय रहते हैं। इसी के साथ ही बताना चाहेंगे आपको, यानी कि खूबसूरत फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दें कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।

निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद श्रोता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं वीकली मैगजीन प्रोग्राम की ओर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी ईटानगर प्रेजेंट्स द वीकेंड स्पेशल मैगजीन शो। आई एम योर होस्ट जुलेखा टोपीवाला।

सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। एसी ईटानगर नाहरलगन एवं सीओ बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

श्रोता, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए इस बार आपको ले चलते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

What would I do? शुद्ध मन फिल्म के गीत के बाद इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को क्रिमिनल फिल्म से। बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। और साथ ही साथ ये भी बता दो आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।
1: रख लो नजर में।
0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश
3: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। मैं आसाम हाइलाकांदी से बोल रहा हूँ, बनी बीच से बपन आचार्य।
3: बपन जी, जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
4: हाँ जी, मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
3: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ।
4: अच्छा अच्छा, और बारिश भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। मौसम थोड़ा मतलब खराब है।
3: खराब है मौसम? बारिश होने से तो अच्छा होना चाहिए, ठंडी होगी।
4: दिन रात एक ही मतलब।
3: ओके ओके ओके,
4: इसलिए थोड़ा खराब हो गया।
3: कंटिन्यू हो रहा है ना बारिश? ओके, हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है, बारिश लगातार हो रही है। जी जी,
4: तो आपके साथ बात हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिल को बहुत सुकून मिल रहा है अभी।
3: जी हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
4: हाँ जी, जरूर जरूर।
3: जी जी जी,
4: ठीक है। आज गाना सुनना चाहता हूँ।
3: हाँ जी जरूर, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
4: आज गाना सुना दीजिए, दीवाना मूवी से।
3: दीवाना मूवी से? ओके,
4: ऐसा गाना तो मैं सुर में गा के सुनाऊँ या?
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गा के सुनाइए। हाँ जी,
4: अच्छा ठीक। तेरा दर्द से दिल आवाज़े रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा।
3: क्या बात है, क्या बात है, आप गाते भी अच्छा है बापुन जी। जी जी जी, सुनकर अच्छा लगा।
4: मतलब ट्राई करता हूँ।
3: जी जी जी,
4: गाने से मतलब दिल को थोड़ा सुकून मिलता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। जी जी जी बिल्कुल सही कहा जी।
4: तो मेरा साथ श्रोता है, पहले मेरा बकेशार जी के लिए
3: थैंक यू,
4: और अनुप कुमार भट्टाचार्य है, सतवा भट्टाचार्य है, सिंधु दास जी है, और अभी जो श्रोता सुन रहे सारी श्रोता के लिए,
3: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। जी जी,
4: हाँ,
3: तो बापुंदा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का। ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर।
0: नमस्कार आकाशवाणी ईटानगर, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर आपका भी स्वागत करता हूँ, और मैं हूँ आपका आकाशवाणी का रेडियो श्रोता श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से।
0: जी श्रीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं।
0: ओके।
1: और प्रोग्राम सुनते, लेकिन मैंने थोड़ा चेक किया, थोड़ा बदलाव आ रहा है प्रोग्राम में।
0: ओके, थैंक यू।
1: सोमवार को रिकॉर्डिंग करते थे, अब गुरुवार के दिन रिकॉर्डिंग करने लगे।
0: जी जी जी, सोमवार और गुरुवार दोनों दिन होते हैं आजकल रिकॉर्डिंग।
1: जी
0: जी जी, तो कहिए श्रीकांत जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाए?
1: आज गाना सुनने का है मुझे, एक दूजे के लिए प्रेम का गाना सुनने का है, क्योंकि आकाशवाणी और हम श्रोता सब एक दूजे के साथ रहते हैं।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: हम बने एक दूजे के लिए ये गाना सुनें।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये रिक्वेस्ट रखा है, फरमाइश रखा है, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों को आप सुनाना चाहेंगे?
1: सर पहले तो आपके लिए डेडिकेट करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हम समय समय पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी जी,
1: पहले आपके लिए और आपके आकाशवाणी में जितने भी उद्घोषक हो आप सर के, उन सबके लिए
0: जी।
1: और आकाशवाणी की में आकाशवाणी के जितने भी श्रोता ईटानगर में रहते उनके लिए
0: जी।
1: और जो अनुप कुमार भट्टाचार्य, सत्योपा भट्टाचार्य, अर्जुन प्रधान जी पक्कुरम घाटे, और उड़ीसा से चित्रसेन जी और मनोज कुमार, उनके लिए।
0: ओके, तो श्रीकांत जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो नमस्कार सर.
0: नमस्कार. हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है.
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार डिस्ट्रिक्ट के कचर आसाम से. कुछ नाम दिल से मिटाया नहीं जाते, कोई दोस्ती को चेहरे बुलाया ना जाते. मुलासा तो ये मेरे दोस्ती की सिरा मिटाया न जाती.
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत देवजीत दा. और कहिए आपके वहाँ पर मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो अभी तो अच्छा है, अभी तो बारिश नहीं.
0: अच्छा.
1: सुबह 7-8 बजे बारिश हुई बहुत.
0: ओके जी.
1: तो आपका वहाँ पर मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है. बढ़िया है मौसम, बहुत ही बढ़िया है. तो कहिए बढ़िया मौसम में आप कौन सा बढ़िया सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज तो मैं बारिश का तो मौसम चल रहा है तो आपका वहाँ पर तो मैं एक बारिश का गाना सुनना चाहता हूँ. फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी.
0: ओके.
1: और गाने का बोल है, गाना गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने.
0: ओके जी.
1: और ये गाना भी है, रिम जिम रूम जुम बिगे बिगे ऋतु में तुम हम तुम.
0: वाह वाह वाह, बारिश के मौसम में बारिश का बढ़िया सा गाना. और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: पहले मेरा पिताजी सुनेगा जितिन कुमार दास, और माताजी है शिल्पानी दास, बड़े भैया है जयजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी.
0: थैंक यू.
1: और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा.
0: जी जी.
1: पहले मेरा आसाम से है, मेरा बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी है छोटे बाबा भट्टाचार्य जी, और है रामतो बाई, और

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं कतर से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल बर्मन।
0: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे
1: सर? थैंक यू सर।
0: कैसे हो आप, सुनाइए।
1: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया, मैं मजे में हूँ। और अभी फिलहाल कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप, घर से या फिर कहीं बाहर से?
1: नहीं सर, मैं अभी तो मैं सिलचर से फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा ओके।
1: मैं सिलचर में 2 दिन से सिलचर में आया है।
0: ओके कुछ काम से?
1: तो हाँ जी हाँ,
0: ओके ओके
1: कुछ काम से आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा और आपका घर कहाँ पे है?
1: घर तो सर सिलचर से 7-8 किलोमीटर
0: अच्छा
1: दूर में है।
0: इतना दूर तो नहीं है ना? जी जी
1: जी
0: जी ओके बढ़िया बढ़िया। तो काम कर लीजिए और काम के साथ साथ हमारा हेलो फरमाइश भी सुनिए। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: सर मुझे आज सुना दीजिए, वो 1982 में रिलीज हुआ डिस्को डेंसर।
0: ओह वाह वाह, क्या बात है। जी
1: महान गीतकार अंजन जी ने लिखा है वो गाना, और महान सुरकार बाप्पी लाहिड़ी जी ने उस सुर में गाना सजाया है।
0: जी जी
1: सुरेश वाडेकर और उषा मंगेशकर के जुगल सर में। उस पिक्चर में अभिनेता राजेश खन्ना के साथ मास्टर छोटू ने अभिनय किया है, और वो गाना है गोरो कीना कालोन की दुनिया है दिल वालों की।
0: दुनिया है दिल वालों की, क्या बात
1: जी
0: है।
1: हाँ जी
0: जी
1: हाँ,
0: जी जी
1: ये गाना मुझे बहुत याद है क्योंकि 1982 में हम सब मिलके सर वो

0: पिकनिक में गया था।
1: ओके हाँ हाँ।
0: और वो पिकनिक पे वो गाना वो माइक पर वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में,
1: अच्छा
0: वो गाना हमेशा बजा था सर।
1: ओ, क्या
0: साथ
1: बात
0: में
1: है।
0: तो हम सब ने डांस किया है।
1: अच्छा ओके जी जी
0: और
1: जी
0: खाना बना भी बहुत मजेदार हुआ और बहुत अच्छा लगा है।
1: जी जी जी बहुत ही बढ़िया जमाना था ना वो, पुराना
0: और
1: दिन।
0: बहुत दूर में गया सर, वो एक पहाड़ी झरना पे हम सब गया है वो
1: पिकनिक
0: पिकनिक
1: मनाने,
0: तो गाना सुनने से वो दिन याद आता है।
1: ओहो क्या बात है
0: जी हाँ सर, जी हाँ
1: जी।
0: जी हाँ।
1: ओके
0: तो
1: जरूर
0: बहुत अच्छा
1: सुनाएंगे।
0: लगा क्योंकि आज मिल गया हेलो फरमाइश,
1: जी जी जी जरूर
0: और मेरा
1: मिलेगा
0: मन के बात आपको साथ शेयर करने को मिल गया तो
1: जी।
0: बहुत
1: बहुत ही
0: अच्छा
1: अच्छा लगता
0: लगता
1: है
0: है।
1: जवाहरलाल जी, जब भी आप अपने बारे में पुरानी यादें शेयर करते हैं
0: जी
1: बहुत ही
0: हाँ
1: अच्छा लगा। हमें भी अपने पुराना जमाना का ये दिन याद आ जाता है जी जी। तो किन लोगों को आप डेडिकेट करना
0: सर,
1: चाहेंगे इस
0: डेडिकेट
1: गीत
0: तो करना चाहता हूँ सर, पहले आपकी
1: को? थैंक यू जी।
0: और प्रेमोजित भाई ही और आशुतोष बाबू ही और अविनाश भाईया ही और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए सर।
1: ओके सभी को आप सुनाना चाहते
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: तो जवाहरलाल जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत
0: हाँ
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आर्मी महोदय, शादर नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी हमारी ओर से, कहिए कैसे हैं आप।
1: मैं धन्यवाद धन्यवाद, मैं
0: जी.
1: आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणीय वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर से। मानवर आप कैसे हैं?
0: क्या बात है शारदा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत ही बढ़िया हैं और हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है रिमझिम। जी जी जी,
1: बधाई हो
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप तो आनंद से हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान दिनकर भास्कर

0: एकदम अपनी प्रचंड किरणों की बरसात कर रहे हैं, गर्म गर्म हवाएं हैं, चिलचिलाती हुई धूप है और ऐसे वातावरण में बस मैं घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूं, आप लोगों से वार्तालाप करता हूं, अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे मथुरा वृंदावन रेड अलर्ट जारी है, मतलब लू चलने के लिए।
1: बाप रे
0: जी,
1: ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है। कृपया अपने आप को बचाए रखिए, लू से घर से बाहर ना निकले। जी
0: जी जी बिल्कुल, निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूं और इसमें अमल भी कर रहा हूं। घर के अंदर रहता हूं, बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक और मौसमी फलों का खूब सेवन कर रहा हूं, ठंडे पानी का सेवन करता हूं, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीता हूं, नॉर्मल जो सामान्य पानी होता है उसी का उपयोग करता हूं।
1: ओके, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से हम अपने आप को गर्मी से लू से बचा के रख सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कहिए शारदा जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
0: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ससुराल। एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूँ, हर सवाल का जवाब ही जवाब हो। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आकाशवाणी ईटानगर पोषण हेतु।
1: जी जरूर सुनाएंगे। और डेडिकेशन?
0: सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय वागरा साहब को याद करता हूँ और नूरी मैम को भी इस गीत में शामिल करता हूँ।
1: जी,
0: और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं शर्वश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा है, राजू यादव जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं और साथ में देवी शंकर शुक्ल हैं, विद्या रत्न शर्मा जी हैं और विजय कुमार पांडे हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत झूमता हुआ आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना ससुराल फिल्म से।
0: जी, हृदय से धन्यवाद, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी
0: जी
1: हाँ। मैं बेतियोनी बगान गुलाहट असम से रमेश पात्र बात कर रहा हूँ।
0: ओ रमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैनो को आसे अपनी?
1: हाँ भले, अपना भाल नहीं?
0: होय होय, मैं खूब भाल। और तात की बरखुन पड़ी से?
1: बतर कैनो को आए
0: तो या अमार यार तो बरखुन पड़ी है।
1: अमार यार तो बरखुन रोद माने শান্তি নাই আৰু।
0: বৰষুণ হলে বেছি বৰষুণ আৰু ৰ'দ হলে উপায় নাই। অ'কে হয় হয় হয়। এতিয়া ক'ৰ পৰা কৈ আছে আপুনি? ঘৰৰ পৰা নাই বাহিৰত আছে?
1: ঘৰৰ পৰাই কৈ আছো।
0: আচ্ছা আচ্ছা, আৰু কোন কোন আছে আপোনাৰ ঘৰত?
1: ঘৰত মোৰ মানুহজনী আছে, কাম লগাই আছে ভিতৰত।
0: আচ্ছা অ'কে।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार. हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है आपका.
1: जी सर, हम धेमाजी असम जुनून मिसा के सपोर्ट से बिमोल बसुमतारी बोल रहे हो सर।
0: जी बिमोल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कैसे हैं आप? सुनाइए.
1: जी सर, हम ठीक है
0: बढ़िया
1: अभी
0: है.
1: सर।
0: ओके, अभी दुकान में है आप?
1: जी सर, अभी थोड़ा खेत में हाल मार के आया हुआ है, अभी खाना पीना खाया, अभी जाएगा दुकान
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा अच्छा ओके ओके. मौसम कैसा है अभी? बारिश है या
1: मौसम
0: धूप?
1: सर अभी तो बारिश भी नहीं आया है, धूप भी नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा
0: ओ
1: ठंडा अच्छा है मौसम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके. और हाल मानने के बाद कौन सा फसल, कौन सा बीज आप बोएंगे, क्या लगाएंगे
1: धान
0: खेती में?
1: का खेती करेगा सर
0: अच्छा,
1: हम लोग
0: धान का ही
1: का।
0: खेती ना. ओके.
1: जी
0: और
1: जी
0: सब्जी वगैरह होता है आपके खेती में?
1: सब्जी वगैरह तो होता है सर, करने से तो होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओ, लेकिन आप ज्यादातर
1: जी
0: तो धान का खेती करते हैं.
1: जी सर, हम मेरा
0: ओके.
1: इतना टाइम नहीं है ना, धान का खेती करके फिर दुकान में जाना पड़ता है,
0: ओ
1: इसलिए
0: जी
1: दूसरा
0: जी
1: खेती नहीं
0: जी
1: करते हैं हम ज्यादा।
0: ओके, ये डबल काम हो जाता है ना.
1: जी सर।
0: ओके ओके जी जी जी तो कहिए, अभी फ्रेश होके कौन सा फिल्म का गाना आपको सुनाए?
1: जी सर, हमको करण उजन का ये गाना सुनने से हो जाए, जय मा काली, ये गाना
0: ओके जी जी हाँ जरूर सुनाएंगे.
1: अच्छा लगता है सुन के।
0: ओके जी जी जी और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी सर, हम लोग का मेरा दोस्त लोग के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। हम लोग का अमोल बसुमतारी, फाइकन मुंडा है, अंजलि बसुमतारी, सुनीता बसुमतारी, रमेश पत्र, सुखविला मेहता, रमेश प्रजापति, पंचुला बसुमतारी, पूरण वर्मा, अविनाश, दुर्गेश नवनपुरी, हितेंद्र दास, जोगेंद्र रंगपी, गोल्डी, अविनाश, शिकारी रंगपी, भगवान सिंह, राकेश, और आपको भी सर सबके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ सर हम।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं. तो बिमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
1: जी सर, बहुत
0: जी.
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, ग्राम आवास जिला यमुन बिहार।
0: ओके अनवर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार आपके यहाँ मेरी कॉल लगी। मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूँ।
0: जी जी जी, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: आरों की ईदों से हमें क्या वास्ता गालिब, हमारा जो चांद दिख जाए हमारी ईद हो जाए। इधर से चांद हम देखें उधर से चांद तुम देखो, निगाहें जिन टकरा जाए हमारी ईद हो जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है अनवर जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने शुरुआत की। और सबसे पहले हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने पहली बार हमें कॉल किया और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप आगे भी जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: बिल्कुल
0: जी जी जी जी। और ईद की क्या तैयारी है?
1: ईद की तैयारी है यही, सुबह सुबह उठे, नहाया धोया, नए नए कपड़े पहना, कुर्ता पजामा, ईदगाह गए, नमाज पढ़ी, वहाँ लोगों से मिले जुले
0: जी,
1: सब रिश्तेदारों के यहाँ गए। अब भी मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे याद आ गया कि ईटानगर में रिकॉर्डिंग है।
0: अरे वाह,
1: करने बैठ गया।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया।
1: रेडियो से मैं कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ, हर जगह हर वक्त
0: जी
1: रेडियो की याद आती रहती है। मैं 12 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ, 1988 से।
0: अरे वाह,
1: और रेडियो एक तरह से मेरे लिए समझिए खुली खुलाई किताब है।
0: जी,
1: गीत भी है, संगीत भी है, गजल भी है, फरमाइश भी है, इसमें आपको गाने भी हैं,
0: मकालात
1: भी हैं, मजामीन भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी बातें, पुराने ख्याल, रेडियो की पुरानी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता
0: है।
1: आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा हो चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं किसी तरह हमारा आकाशवाणी केंद्र चलता फूलता रहे परवान चौक पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: सुनने वाले कभी भी कम ना हो।
0: जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात कही आपने अनवर जी। तो कहिए आज इस पाक अवसर पर हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाएं?
1: मिल गया मुझे बहाना तेरी जीत का, ऐसी खुशी लेके आया चांद ईद का।
0: ओके
1: और मैं अपने दोस्तों का नाम ले लूं अगर आप इजाजत दें।
0: जी जी जरूर जरूर। हाँ जी,
1: हसीना मंसूर, मजवान शाही, पूनम रजनी, बसंती, ममता रिजवाना, शबनम, मोनिका, रिंकी तिवारी, तरन्नुम जाल, खुशी खजाना, प्रेम खुशी, अफरा सैयद, रीजा मंसारी, रानी अर्चना, पूजा निशा, अनिता राघव, उदिता, सुजीता, नीना शर्मा, शाना शर्मा, सितारा बेगम, नसीम बेगम, शमा परिन, मोहब्बत बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, गायत्री, खालदा, नाजी हसन, पीटी, साजिवाना, गणेश, बसंतीलाल, अनु भट्टाचार्य हैं और आप हमारे साथ।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: धन्यवाद सर जी।
0: जी और कहिए, क्या कर रहे हैं अभी?
1: बस बिल्कुल सर जी, दुकान जाने की तैयारी थी, आपके चैनल की याद आई कि आज कॉल रिकॉर्ड कराना है, तो मैंने किस्मत अच्छी थी, फर्स्ट बार डायल किया और मेरा कॉल लग गया।
0: जी जी जी जी, कॉल जरूर लगेगा, आप तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर जी, आपके चैनल से जुड़े हुए 3-4 साल से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा प्रोग्राम रहता है और अच्छी काफी मेहनत करते हैं आप प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, क्योंकि एक प्रोग्राम को तैयार करने के लिए इतने 16 मित्रों की कॉल को रिकॉर्ड करना और कॉल के रिकॉर्ड के अनुसार उनके चॉइस के जो गाने रहते हैं उनको सेलेक्ट करना, टच मारना
0: जी,
1: और ये सब करके एक प्रोग्राम की एडिटिंग करके एक प्रोग्राम 45 मिनट का बनाना, एक अपने आप में एक बहुत ही काम जो एडिटिंग का रहता है, ये बहुत मेहनत वाला रहता है, ये मैं समझता हूँ इस चीज को।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने लोकेंद्र जी, बहुत ही मेहनत है इसमें भी, ऐसा नहीं है कि हम एसी के रूम में बैठे और आराम से रिकॉर्डिंग करें, गाना बजाएं, ऐसा
1: नहीं। नहीं सर जी, हम समझते हैं जैसे कि जो वीडियोग्राफी करने वाले रहते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: भी गाना एड करते हैं, तो ऐसा आपका भी बहुत उसके अंदर योगदान रहता है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार को भी धन्यवाद।
0: जी बहुत ही धन्यवाद। तो कहिए, सैलून जाने से पहले कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: आज गाना सुनना सर, ये हाथ की सफाई फिल्म का गीत है, इसमें गीत है वादा कर ले साजना तेरे गीत है।
0: वाह वाह वाह जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी हैं, सुनील झा जी हैं, राम बाबू मालवी जी भोपाल से, योगेश जी हैं, गौतम जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, गंगाधर जी हैं, और ये सभी हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के लिए रहेगा और आकाशवाणी ईटानगर के लिए भी यह गीत रहेगा कि वादा कर ले साजना कि तेरे बिना हम न रहे।
0: तो लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना हाथ की सफाई फिल्म से।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 MHz पर।
1: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें, ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें, ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
2: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और

प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

का ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ श्रोता, अरुण एफएम आपके खिदमत में हाजिर रहती है सुबह के 5:48 से लेकर के रात्रि के 9:30 बजे तक हर तरह के मजेदार नए पुराने गीतों के साथ आपके मनोरंजन के लिए।

सिर्फ गीत ही नहीं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराती है आपको अरुण एफएम। ये बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप आनंद ले पाएंगे कुछ पाश्चात्य संगीतों का। तो चलिए श्रोता, लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज की ओर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी

0: सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। एसी ईटानगर नाहरलगन एवं सीओ बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे, साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
1: आइए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की ओर।

श्रोता कार्यक्रम भूले मिश्र गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बता दूँ आपको कि पहला गीत आप सुन रहे हैं प्यासा फिल्म से। ये गीत फिल्म प्यासा का एक बहुत ही प्यारा गीत है। इस गाने में गुरुदत्त और माला सिन्हा की खूबसूरत अभिनय शैली देखने को मिलती है। इस गीत के गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बता दूं आपको कि इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को अजनबी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि आप सुन रहे हैं इस गीत को तुम्हारी कसम फिल्म से आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में।

श्रोता झुक गया आसमां फिल्म केसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48।

0: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outpost along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
1: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
0: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day. Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, she said, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly. Addressing the students, Mr. Pradhan assured them that the government understands their concerns and acknowledged that their trust had been breached. He said that the authorities had taken a tough decision because they did not even have a single deserving student's future to fall into the hands of examination mafias or become a victim of irregularities. Indirect diplomatic negotiations between the United States and Iran have advanced significantly as both sides review a tentative 60-day memorandum of understanding to extend the current ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. United States Vice President J.D. Vance confirmed that negotiators are very close to an initial agreement, though final endorsement from President Donald Trump is still pending. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 96 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals have set the target of 215 runs against Gujarat Titans in the Qualifier 2 match at New Chandigarh tonight. In reply, Gujarat Titans were 57 for no loss in 4.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। इबोला के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कांगो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। कांगो में इबोला के बुंदीबुग्यो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है, हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण 2 महीने पहले शुरू हुआ था। बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई अनुमोदित टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने एक सप्ताह में ही सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि भारतीय व्यापार दल ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भी भारत आने की उम्मीद है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों पक्ष मौजूदा युद्ध विराम बढ़ाने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए 60 दिन के अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पुष्टि की है कि वार्ताकार प्रारंभिक समझौते के बहुत करीब हैं, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। एक रिपोर्ट।
4: ताज़ा परिस्थितियों के मद्देनजर खाड़ी सहयोग परिषद के देश तेजी से कदम उठा रहे हैं। इन देशों के लिए युद्ध विराम का टूटना केवल एक कूटनीतिक झटका नहीं है बल्कि अस्तित्व का संकट है। कतर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री नियमों को लेकर अंतिम गतिरोध को सुलझाने के लिए ईरान में विशेष मध्यस्थता दल भेजे हैं। कतर एक संरचित एस्क्रो व्यवस्था स्थापित करने पर भी काम कर रहा है ताकि ईरान को जारी किए जाने वाला धन केवल मानवीय सहायता से जुड़े कार्यों में हो सके। एक और जटिलता लेबनानी पहलू में निहित है। ईरान ने दबाव डाला है कि ये समझौता ज्ञापन सभी क्षेत्रीय मोर्चों को शामिल करे, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इसराइल के निरंतर सैन्य अभियान और विस्थापन आदेशों से एक महत्वपूर्ण विसंगति उत्पन्न होती है। वर्तमान में तैयार किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार लेबनान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 1.5% की गिरावट आई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 1.7% गिरकर $92.14 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.4% गिरकर $87.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
5: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
2: पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कैरोस हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने मलेशिया के कांग खे शिंग और अरुण ताई को हराया। वहीं भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ने चेन तांग जी और तो ई वे की मलेशियाई जोड़ी से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तो ई वे के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय मूल के अमरीकी छात्र शे पारेख ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स राष्ट्रीय स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर ये खिताब अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इबोला के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष